0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। यह हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जानें और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो ये है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज न होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा। मैं हूं गगन आपके साथ।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो शारदा।

0: राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बात ही किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं। ये खास प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, हौसले की डगर। जाहिर सी बात है कि जब कोई डगर है तो निश्चित तौर पर वो डगर खुशियों के साथ भरी हुई है, कांटों के साथ भरी हुई है। जब कोई इंसान अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो बहुत बड़े चैलेंजेस को फेस कर वो अपनी मंजिल पर पहुंच रहा होता है। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ इस प्रोग्राम में बात करने के लिए मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो कि टैरो कार्ड रीडर है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप ऑथर भी हैं और आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अच्छी मालूमात है। आप हैं मेरे साथ शिविका शर्मा। तो शिविका शर्मा, सुनो शारदा 90.8 एफएम पर आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच।
0: कैसा फील हो रहा है?
1: बहुत अच्छा, बहुत अभी से इंट्यूशंस आ रहे हैं।
0: जी जी जी।
1: तो लेट्स सी कि आगे आप क्या चीजें मुझे बताते हैं, क्या चीजें करते हैं डिस्कस।
0: चलिए चलिए डिस्कस करते हैं, यानी कि शुरुआत करते हैं। जब शुरुआत का दौर शुरू हो ही चुका है तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक बनता है, यानी कि जो बातों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन म्यूजिक एक ऐसा जरिया कि जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर रौनक आ जाती है, खुशियां आ जाती है। और निश्चित तौर पर आपको म्यूजिक का सहारा लेना चाहिए क्योंकि जिंदगी में, यानी कि भागती दौड़ती जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है। और जब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जहां आप सोचते हैं, समझते हैं और सुनते हैं, तो उसके बाद आप एनर्जी के साथ भरपूर आगे कदम बढ़ा सकते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल यू सो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि टैरो कार्ड रीडर, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रही हैं। आप हैं शिविका शर्मा। तो शिविका शर्मा, सबसे पहले स्वागत के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं
1: जी।
0: तो शुरुआत यूं कर सकते हैं कि बता मेरे चेहरे पर क्या क्या लिखा है। तो थोड़ा सा परिचय मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूंगा। मैंने वही परिचय दिया है जो आपने मुझे बताया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है गगन इसके पीछे भी बहुत कुछ है। सो प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ।
1: मैं शिविका शर्मा पेशे से टैरो कार्ड रीडर हूँ। 4 साल से मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा कनेक्टेड और एक्टिव हूँ। जैसे मुझे ये डिवाइनली गाइडेड हुआ है, तो इसी तरीके से टैरो में आना मेरे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी डिवाइन की ब्लेसिंग मैं मानती हूँ, जिसके लिए सब्र और शुक्र मुझे दोनों है।
0: क्या बात है, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आपके, सब्र और शुक्र। ये लोगों के पास नहीं होता अक्सर,
1: लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाती है।
0: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। ये जो सिखाती है आध्यात्म की जिंदगी को आप खुशी के साथ जिए, तनाव मुक्त अपने आप को रखें, तो यही चीज मैं समझना चाहता हूँ कि ये और क्या क्या सिखाती है
1: टैरो कार्ड रीडिंग। देखिए, बेसिकली स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा कोर में जाने वाली चीज है। टैरो में आना मेरे लिए बहुत ज्यादा गाइडेड था, क्योंकि मुझे एक ड्रीम के जरिए एक ऑर्डर आया। जब मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रही थी अपने सपनों को लेकर, तब मुझे एक अचानक से ड्रीम आया कि अभी तक जो किया वो करने की जरूरत नहीं है, अब तुम टैरो करो। तो मेरे केस में ये फंडा बिल्कुल फिट नहीं बैठता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो अपने सपने पूरे करोगे, दैट आई वॉज ऑलरेडी डूइंग। लेकिन ये जो है काफी नेक्स्ट लेवल पर चला गया। जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम अपने टैरो कार्ड्स ऑर्डर किए, उनके कहने से मुझे पता नहीं था कि टैरो का टी क्या है। देखिए, और आज ये मेरी डेस्टिनी है। ऑर्डर किया, उसके बाद कुछ प्रेडिक्शंस की, तो ये चीजें सरफेस पर आई और बहुत सारी प्रेडिक्शंस जैसे करेक्ट होती चली गई। तो आई फेल्ट समवेयर कि ये मेरी पास्ट लाइफ्स थी जिसकी वजह से लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स थे। अभी भी जितने भी सारे लोग अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है समवेयर कि उनके जो कर्माज हैं वो हील नहीं है, जिसकी वजह से ही कई लोग ऐसे होते हैं जिनके आप समझ सकते हैं कि एंसेस्टर्स का कोई कर्स होता है या कुछ ब्लेसिंग्स रुकी हुई है, जो हम बोलते हैं ना ब्लॉकेज आ रहा है, हो नहीं रहा है काम
0: जी।
1: या एक मार्क से रह गया, 4 नंबर से रह गया एग्जाम
0: जी।
1: जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वहां पर जो ब्लॉकेज है उसको हम लोग हील करते हैं। मैं स्पिरिचुअलिटी पर लिखती भी हूँ और जो चैनलिंग मुझे होती है ड्रीम्स के जरिए, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स आते हैं वो बहुत नेक्स्ट लेवल के होते हैं और बहुत हायर रेलम की एनर्जीज जो डिवाइनली गाइडेड होती है ना, उनके साथ में कनेक्टेड होते हैं।
0: चलिए इसके बारे में और डिटेल में आपसे जरूर जानेंगे। तो दोस्तों, ये जो चर्चा हो रही है, एक हौसले की डगर कार्यक्रम में बातें हो रही हैं कि ये जो हौसला आपको मिला, किसने आपको प्रेरित किया, क्या क्या चैलेंजेस आए और किस कदर आप आगे बढ़ रही हैं या क्या क्या प्लानिंग है। निश्चित तौर पर अगर आप सीखना चाहते हैं, समाज से सीख सकते हैं, अपने आप से सीख सकते हैं, एक सक्सेस स्टोरी से सीख सकते हैं कि अगर आपका जो सपना है, जो आपका अपना है, उसको साकार करना चाहते हैं तो बस कोशिश करते जाइए। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार हुआ नहीं करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। कहते ये भी हैं कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका हौसला पस्त नहीं होगा, आपका हौसला मस्त होगा, बुलंद होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: चैलेंजेस फेस किए हैं डे वन से. स्पिरिचुअलिटी में अगर कोई भी आ रहा है तो उसकी लाइफ निश्चित तौर पर बहुत ही संघर्षों से भरी होती है. एक संघर्ष होता है कि आप 3D रियलिटी में फेस कर रहे हो कि लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे. एक होता है एनर्जी लेवल पर, जिस पर हम कहते हैं कि पूरा आपकी साइकोलॉजी डिपेंड कर रही है. ड्रीम्स कुछ इस तरीके के होते हैं जो रियलिटी में फिर करेक्ट होते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हौसला आता है मुझे खुद से ही. मैं खुद की ही इंस्पिरेशन हूँ. और आपको थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि पेरेंट्स का जो थॉट प्रोसेस रहा है वो इज़ लाइक कि आज के हिसाब से जो सोसाइटी बोल रही है, और मैं बिल्कुल सोसाइटी के रास्ते से बिल्कुल अलग चलती हूँ.
1: मुझे लगा कि आप ये कहने वाले हैं गगन कि मैं उस सोच से वाबस्ता होती हूँ जो आज का समय नहीं, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं कि आज की सोच के हिसाब से चलो, लेकिन आप उससे अलग चलती है. ग्रेट. ये तो बिल्कुल ही कहते ना कि कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास है.
0: जी, एक्चुअली वो विरोधाभास क्या है कि जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में एक्टिव हो जाते हो ना, और अपनी सोल से जब आपकी एनर्जी अलाइन होती है, आपके अंदर एक आत्मा है, भगवान ने भगवद गीता में कहा है. उस आत्मा की जब आप कॉलिंग को पहचान जाते हैं तो आपको पता चलता है कि बाहर जो दुनिया में चीजें हो रही हैं वो किस तरीके से हो रही हैं, कहाँ क्या गलती है. पेरेंट्स सोच के चलेंगे कि आगे सब कुछ ठीक चलेगा, ऐसा करो वैसा करो, वहां पर कुछ मैनिपुलेशंस होंगे, कुछ अंदर की चीजें कुछ बाहर की. और एक स्पिरिचुअल वर्कर के लिए आप ये चीज बोल रहे हो, वो बोलेगा मेरी स्पिरिट से तो ये आवाज ही नहीं आ रही है,
1: दिल से आवाज नहीं आ रही.
0: करेक्ट.
1: तो मैं एक बात को अगर समअप करूं, इसका सारांश निकालूं, तो यही बात निकलकर सामने आती है कि अपने दिल की जरूर सुने. जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, अक्सर हमने ये देखा है कि लोग पेरेंट्स के प्रेशर में आकर अपनी उस सोच को पीछे छोड़ देते हैं जो बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं. लेकिन आज के समय में हम देख भी रहे हैं कि लोग अपने बच्चों को क्रिकेट ग्राउंड पर लेकर जाते हैं, जिसमें मैं एक पार्ट हूँ. अदरवाइज मेरा समय कुछ और था, लेकिन थैंक गॉड कि जो मैंने चाहा वो फील्ड मुझे भी मिला हुआ है बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स. लेकिन आपकी बात से यही समझ में आता है कि जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, उसके लिए कोशिश करिए, मेहनत करिए. और वो फिल्म का डायलॉग है कि पूरी कायनात आपके साथ होती है. दोस्तों, इस सोच से हम वाबस्ता हो रहे हैं, यानी कि इस सोच से हम दो चार हो रहे हैं, और ये सोच है शिविका शर्मा की, जो कि एक टैरो कार्ड रीडर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप ऑथर भी हैं. तो वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का. और भी कुछ बातें हैं हौसले की डगर में जानने के लिए, समझने के लिए, और ये हौसला हमें हिम्मत देता है कि हम भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं. ये हौसला हमें कहाँ से मिलता है? जब हम चलते हैं तो चैलेंजेस भी आते हैं. इसके बारे में बातें करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ.

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन आपके साथ, और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय है हौसले की डगर। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर वो हौसला आपका बुलंद रहता है। आप कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, और हम बात कर रहे हैं शिविका शर्मा से, जो कि एक टैरो कार्ड रीडर है और मोटिवेशनल स्पीकर है। तो शिविका शर्मा, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: जिस हौसले को आप सलाम करती हैं, ये हौसला आपको खुद से मिलता है, अपने दिल की आवाज़ आपने सुनी, जिस रास्ते पर आप चली, या यूं कहें कि जिस हौसले की डगर पर आप चली, जाहिर सी बात है कि दिक्कतें बहुत आई होंगी, उन चैलेंजेस को आपने कैसे फेस किया?
1: सबसे पहली दिक्कत तो देखिए मुझे 2020 में ही आई, जब मेरी माँ इस संसार को छोड़कर चली गई। वो एक बहुत हार्ड पार्ट था लाइफ का, बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वहाँ पर मेरा एक तरफ तो अपना सपना था और एक तरफ समाज खड़ा था। मुझे आज भी वो वक्त याद है कि जब 13वीं होती है
0: जी,
1: तो उस टाइम पर मुझे बैठ कर लोग समझा रहे थे कि अभी आगे चीज़ें परस्यू करने की ज़रूरत नहीं है, अपना घर संभालो, यहाँ पर तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने डैड को बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे आगे जाना है। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी जो अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए ना, उसकी शुरुआत हुई नहीं है। अभी जस्ट एजुकेशन मेरी कंप्लीट हो रही है, तो वो जैसे तैसे बस उस चीज़ के लिए अग्री किए, बट प्रेशर था उनके ऊपर भी। तो वहाँ पर मैं सोसाइटी के अगेंस्ट चले गई, क्योंकि मेरे दिल की जो आवाज़ थी ना, बहुत पक्की थी। मुझे अंदर से सिर्फ उस टाइम पर एक थॉट आ रहा था, ये जिंदगी एक बार मिली है और इसी में सब करके जाना
0: क्या
1: है।
0: क्या बात है, जीले सिमरन अपनी जिंदगी। ग्रेट। यानी कि हम फिल्में भी देखते हैं हिंदुस्तानी फिल्मों का, यानी कि बॉलीवुड की फिल्मों का असर है हमारे ऊपर।
1: जी,
0: वेरी गुड।
1: उस टाइम पर जब मुझे ये आया ना कि जिंदगी एक बार मिली है, तो मैंने एक चीज सोच ली कि लोग तो बोलेंगे, अगर मैं सही जा रही हूँ, मेरे कर्म अच्छे है ना, तो वो अपनी जगह बना लेंगे, किसी का गलत नहीं कर रहे। आगे जाकर आज जो क्वेश्चंस उठा रहे हैं वो आगे जाकर खुद एग्जांपल देंगे। मैं जा रही हूँ, मुझे मेरा काम करना है।
0: वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि आपने अपने पेरेंट्स को समझाया, वो समझ गए। इसके अलावा मैं देखता हूँ आम जिंदगी की अगर मैं बात करूँ शिविका, तो लोगों के सामने ये चैलेंजेस आते हैं, तो वो उस चैलेंजेस को कैसे फेस करे, कैसे ओवरकम करे, ताकि वो अपने सपने को जी पाए, साकार कर पाए।
1: देखिए, इसको मैं सीधा सीधा आपको बोलती हूँ, आज स्पिरिचुअलिटी में इतना एक्टिव होने के बाद में, अपने दिल की सुनो। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोल रहा है, प्यार से मना के देखिए पेरेंट्स को, क्योंकि सारी चीजों में वो आपके सबसे अपने होते हैं। लेकिन अगर वो आपको छोड़कर भी ये कह रहे हैं कि वो चार लोग क्या कहेंगे, तो आप अपने आप को चूज करिए, आप अपने सपने को चूज करिए। आप पेरेंट्स की भी जिंदगी में एक ही बार मन की करेंगे और अपने भी एक ही बार करेंगे, तो आप एक इंडिविजुअल सोल हैं। किसी भी आत्मा को किसी दूसरी आत्मा के द्वारा परेशान करना भी गलत है।
0: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत बात आपने कह दी कि किसी आत्मा को परेशान करना भी बहुत गलत है। और जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर हमारे भी कहीं ना कहीं काम गड़बड़ा जाएंगे, दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने भी आएंगी। मुझे लगता है कि इस बात को गांठ बांध लीजिएगा दोस्तों, कि अगर आपने किसी को परेशान किया तो नेचर कर्मा आपको कहीं छोड़ेगा नहीं, लेकिन जब आप अपने दिल की सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपका सपना साकार होगा, मेहनत वसूल जरूर होती। वक्त है यहां पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बातों का सिलसिला लगातार जारी है सिर्फ सुरो शारदा 90.8 एफएम पर। प्रोग्राम का नाम है हौसले की डगर। मेरे साथ बात कर रही हैं आप हैं शिविका शर्मा, जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यारी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन, आपके साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोग्राम का नाम है हौसले की डगर और इसी संबंध में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ी हुई हैं आप हैं शिविका शर्मा, जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आपकी 2-3 किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और लोगों को मोटिवेट करती हैं अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो शिविका, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: अगेन थैंक यू।
0: क्या बात है, थैंक यू से हम आगे बढ़ते हैं। लोग अक्सर थैंक यू कहना भूल जाते हैं, शुक्राना करना भूल जाते हैं। आप शुक्राना करती हैं ईश्वर का, अपने पेरेंट्स का, कि उनकी बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। चैलेंजेस आते हैं, आपने उसके बारे में भी हमें बताया, हमारे लिसनर्स को बताया। कहीं कहीं लोग घुट जाते हैं, अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि जब मौका मिलता है तो वो अपने सपने को जीना चाहते हैं। आजकल वो ऐसी सोसाइटी में ऐसा हो भी रहा है, लोग कर भी रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं?
1: देखिए, मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि अगर एक इंसान बनकर खड़ा हो रहा है और चार देखकर कह रहे हमें मौका मिलता तो हम भी करते।
0: यस,
1: तो आपको मौका दिया गया था, आप अपने आप को चूज नहीं कर पाए। आपको अपना चुनाव करना था तो आप भी उसी जगह होते या उससे और आगे होते। तो उसी वक्त चूज करिए जिस वक्त वो घड़ी आ चुकी है, वो समय आ गया है कि आपको अपने सपनों को पूरा करना है। अब बताइए, क्या आप अगर अच्छा नाम कमाते हैं तो उससे मिलने वाली शोहरत, उससे मिलने वाली तरक्की आपके माँ बाप को अच्छी नहीं लगेगी?
0: बेशक
1: लगेगी, बट जिस वक्त समाज बीच में खड़ा है वहां पे आप अपने आप को चूज करिए। अगर देखिए, कैरेक्टर बहुत कई बार ऐसा होता है, स्पेशली लड़की के केस में ये सबसे ज्यादा हमारे समाज के अंदर है, सोसाइटी में, कि उसको 4 एलिगेशंस और एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि बिगड़ जाएगी, कहीं कुछ ना हो जाए, गलत हो जाए, लेकिन आप अपने कैरेक्टर को ठीक रखिए। अपने सपने को हर वक्त जीना है आपको। जो मौका आपको मिल रहा है उसको यूज करिए। जब आप अपने आप को हर बार चूज करेंगे, अपने पैशन को चूज करेंगे, तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि मुझे मौका मिलता तो मैं ये कर लेता।
0: क्या बात है, क्या बात।
1: और इसको पूरा करने की कोई उम्र नहीं है। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है या मुझे ये करने में खुशी मिल रही है अभी भी, आप आज से शुरू करिए।
0: क्या बात,
1: आप जब तक जिंदा है ना, तब तक आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जब जागो तभी सवेरा होता
0: है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बात आपने कह दी और यही प्रोग्राम की थीम है कि हौसले की डगर। और इस तरीके से जब हमें हौसला मिलता है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बेरोक टोक आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। हौसले के लिए अच्छी अच्छी सक्सेस स्टोरीज को आप जानिए, पढ़िए, सुनिए, लोगों से मिलिए, बातचीत करिए और जब भी मौका मिले ग्रूथ चौका मार दो। डरने का नहीं, ईश्वर आपके साथ है, खुदा आपके साथ है और मेहनत करते जाइए। और बस यही कहेंगे कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती। और आपके पेरेंट्स को कभी आप साबित करना चाहते हैं तो उनकी दुआओं के साथ आप आगे बढ़िए और कोशिश करते रहिए, सब अच्छा होगा। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बातें करेंगे, एक मैसेज लेना चाहेंगे शिविका शर्मा से, जो कि टैरो कार्ड रीडर है, मोटिवेशनल स्पीकर है। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सोर्स शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। मेरे साथ स्टूडियो में बड़े खूबसूरत मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप हैं शिविका शर्मा, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, ऑथर भी हैं। तो एक बार फिर से शिविका, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच।
0: शुरुआत हुई, अंत की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो एक छोटा सा संदेश मैं लेना चाहूंगा अपने यूथ के लिए, क्योंकि शारदा यूनिवर्सिटी है, यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं, उनकी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, तो वो फाइनली एक क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे?
1: देखिए, यूथ के लिए, आज के युवा के लिए यह मैसेज है कि ये फाइंड आउट करिए कि सिर्फ चीजों के प्रति आप आकर्षित तो नहीं है। आपको बहुत चीजों का शौक हो सकता है, लेकिन कोई एक ऐसा शौक जिसमें आपको घड़ी नहीं देखनी पड़ रही है और उसको आप बस करते जा रहे हैं, आपके लिए दिन के 24 घंटे भी कम है। बट अगर कोई ऐसा शौक आपको मिल रहा है, तो अब उसके लिए कुछ भी करना पड़े, आप उसको अचीव करिए। वो आपका गोल है, वो आपका एम्बिशन है, वही आपको इस समाज में वो मान प्रतिष्ठा दिला सकता है जो घड़ी देखकर करने वाले काम नहीं दिला सकता।
0: क्या बात है, इसी को हौसला कहते हैं, इसी को कहते हैं जज्बा। वो जज्बात, वो जज्बा मिलाकर आप आगे चलेंगे तो मुझे लगता है कि सब कुछ बेहतर होगा। दूसरी दृष्टि से एक छोटा सा संदेश मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने महारत हासिल की हुई है, आप आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत कुछ जानती हैं, सीखती हैं, समझती हैं, लोगों को बताती भी हैं। जो स्पिरिचुअलिटी की हम बात करते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर एक छोटा सा संदेश कि लोग कैसे आध्यात्मिक दृष्टि से जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि वो अपना भला कर सकें, सोसाइटी का भला कर सकें।
1: देखिए, सोसाइटी का भला करने से पहले आपको अपना भला करना पड़ेगा।
0: बेशक
1: आप स्पिरिचुअलिटी को डीपर लेवल पर समझिए। सिर्फ शब्दों से आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते।
0: सही कहा।
1: चार किताबें पढ़ने से आपके अंदर अगर कोई परिवर्तन नहीं आ पाया, आप अपनी आवाज को बुलंद करके अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, तो ना तो आप कर्म जान पाए, ना आप अध्यात्म जान पाए।

0: जाए, आपको जानना पड़ेगा कर्म योग क्या है। जो सपना आपने देखा है उसके लिए आपको कर्म करना है, और अगर आप निष्काम भाव से उसे करके चलते हैं तो फिर वो आपको सक्सेस देता है, वो चीजें आपके पीछे पड़ जाती हैं। आप अंदर से आपकी जो सोल आपसे कह रही है उसको आप सुनिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सोल में जो आपकी इंट्यूशन है ना, वो आपको कभी गलत गाइड नहीं करती, वो आपको बहुत सारी चीजों से पहले अवेयर कर देती है, आपको बता देगी हाँ ये काम तू कर ले 100% तेरे लिए है। 100% का जो एश्योरेंस है ना, वो आपको आपकी सोल से मिल जाता है।
1: क्या बात
0: जी। तो ये स्पिरिचुअलिटी का मैसेज तो आपके लिए है कि अपनी सोल से जुड़ जाओ, बाहर के शोर शराबे को बंद करके अंदर से फील करो कि आप क्या चाहते हो, और उसी चीज को मैनिफेस्ट करिए। ठीक है, जैसे जैसे आप मैनिफेस्ट करोगे उसके ऊपर काम करेंगे, अच्छे कर्म मेहनत करेंगे पूरी तरीके से, फिर आई डोंट फील कि आपको सक्सेस कहीं छोड़कर किसी और रास्ते से निकल जाएगी, मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि आपके अंदर वो रच बस गया है। स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर उतारिए और अपने काम को अपना पार्टनर बना लीजिए।
1: क्या बात है, मोहब्बत कर लीजिए अपने काम से, निष्काम यानी कि मोहब्बत के साथ आप आगे बढ़ेंगे और फल की चिंता मत करते जाइए, काम करते जाइए, तो निश्चित तौर पर एक ना एक दिन आपको वो रिजल्ट परिणाम आपके फेवर में आएगा ही जरूर। ऐसी तमाम कहानियां हैं, वो सक्सेस स्टोरीज जिनको आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, गढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करती हैं। और जब ऐसी शख्सियत हमारे स्टूडियो में आती है जो हमें मोटिवेट कर रही है, चूंकि आप हैं मोटिवेशनल स्पीकर, आप हैं टैरो कार्ड रीडर, आप हैं एक ऑथर शिविका शर्मा, बहुत सारी बातें हौसले की डगर कार्यक्रम में आपसे हुई, आपने हमें एक हौसला दिया, हमारे लिसनर्स को हौसला दिया कि आप अपने सपने को कैसे जी सकते हैं, कैसे उसको साकार कर सकते हैं, कैसे उसको आप आगे लेकर जा सकते हैं, क्योंकि जो डर गया वो घर गया। अरे ये तो नई लाइन मिल गई क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि नहीं यार दिक्कतें बहुत ज्यादा आ गई, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने सपने को ड्रॉप कर रहा हूं।
0: ये इनिशियल स्टेज पे यही आता है, लेकिन जब आप अपनी सोल की आवाज को सुनते हैं ना, तब जो आता है वो इसके विपरीत होता है।
1: और देखिए शिविका, ऐसा भी होता है कि जब आप दिल की आवाज सुनते हैं, मैं काम के अलावा दूसरी तरफ बात करता हूँ कि फिल्मों में भी यही होता है और ऐसे ही टाइटल्स भी आते हैं कि लव के लिए कुछ भी करेगा तो वो लव इंसान हासिल कर लेता है। और यही चीजें अगर सोच ले कि यार ये मुझे सपना है, ये डॉक्टर बनना है, ये क्रिकेटर बनना है, तो वो सारी चीजें या उस एनर्जी के साथ चलेगा तो निश्चित तौर पर वो उसको हासिल कर ही लेता है। तो हौसला ऐसे ही मिलता है। तो शिविका शर्मा आप हमारे साथ जुड़ी रही, बहुत अच्छी चर्चा रही, लेकिन जाते जाते मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई अगर आपसे कनेक्ट करना चाहे, कोई सोशल मीडिया पेज हो, यूट्यूब हो, जहां आपसे लोग मिल सकें, अपने मन की बात आपसे शेयर कर सके।
0: तो टैरट विद शर्मा शिविका मेरा यूट्यूब चैनल है, जहां पर मैं करियर, लव रिलेशनशिप्स, इस तरीके की चीजों के जरिए लोगों को गाइड करती हूं टैरो रीडिंग्स के जरिए। पेशे से टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो उसके साथ साथ आपको काउंसलिंग के जरिए कुछ ऐसी गाइडेंस में देती हूँ जहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वहाँ पे आपको एक रास्ता मिल जाता है। आपको चीजें समझ में आती हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना, सब कुछ बहुत फैला हुआ है आपके लाइफ में, उसको एक सही तरीके से डायरेक्शन मिल जाता है कि अब आपको एक्चुअली में क्या करना है। आपको सीधी तरह से बोलूं तो मझधार से बाहर निकालने का काम मैं करती हूं।
1: क्या बात है, क्या बात है। हम भी चाहते हैं कि ये काम बादस्तूर यूं ही चलता रहे, आप मझधार में ना फंसे, और तिनके का ही सहारा होता है, वो तिनका हमारे सामने है शिविका शर्मा। आपने हमें समय दिया, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद शिविका।
0: थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।
1: थैंक यू, थैंक यू। सो लिसनर्स, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? 01204060205 अर्थात 120 शहर का एसटीडी कोड लगाना ना भूलेगा। 40205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं, और शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे हैं वो आपके लिए खुले हुए हैं, कभी भी आप आइए, मुलाकात हमसे कर सकते हैं। वक्त का इशारा, मैं होता हूं 9:11, और यही कहना चाहता हूं जाते जाते कि ना टेंशन लेने का, ना टेंशन देने का, खुश रहने का, बिंदास रहने का, और सुनते रहने का। ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 FM। टाटा बाय, टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू।
2: जिंदगी, म्यूजिक प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज्ड बाय रूहान मलिक, लिरिक्स बाय साकिब नबी, ओनली ऑन सुरु शारदा 90.8 FM। जिंदगी।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए Sharda School of Media, Film and Entertainment. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म टेलीविजन OTT प्रोडक्शन एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग
1: और हाँ एक खास बात SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन आरजिंग एडिटिंग प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है तो फिर कहीं देर ना हो जाए कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in शारदा यूनिवर्सिटी नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, और यकीन मानिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सेहत सही तो लाभ कई। इस बारिश के मौसम में कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखें, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। बारिश के मौसम में अक्सर होता क्या है कि ऑन रोड हमें सीवर नजर नहीं आ रहा होता। ऑन रोड सीवर के ढक्कन कभी कभी खुले होते हैं, और बारिश के मौसम में जल भराव की जब स्थिति होती है तो वहीं जहां ढक्कन खुले हुए हैं घटना दुर्घटना घट जाती है। नाले ओवरफ्लो होते हैं जिसकी वजह से पानी नालों से निकलकर या नाली से निकलकर सड़क पर आ जाता है, जिसकी वजह से जल भराव की स्थिति हो जाती है। तो ऐसे समय में हमारा फर्ज बनता है कि सुरक्षित चले, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और साथ ही ऐसे मौसम में अक्सर हमने ये देखा है कि पोल्स यानी कि जो बिजली के खंभे होते हैं उसमें भी करंट दौड़ जाता है, जिसकी वजह से जाने अनजाने में जनधन हानि हो जाती है और कभी कभी तो बहुत बड़ी घटना घट जाती है। और बारिश के मौसम में हमने ये भी देखा है कि पेड़ गिर जाते हैं। बारिश के मौसम में हमने ये भी देखा है कि रोड धस जाती है। जब कोई स्पीड में गाड़ी चलाकर आ रहा है तो आगे उसे नजर नहीं आता कि रोड धसी है या नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि जो आपकी तय सीमा लिमिट है उससे थोड़ा कम चलिए, सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। बारिश के मौसम में कैसा अपना ख्याल रखें, क्योंकि सच कहते हैं सेहत सही तो लाभ कई, इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरु शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा।
1: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं जरा सुने।
2: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ी

वाहनों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जन्म के समय लगे कमजोर, 14 दिन बाद भी वृद्धि हो कम, छूने पर लगता हो ठंडा या फिर लगता हो गरम, जन्म के पहले दिन या 14 दिन बाद भी आंख और शरीर हो पीला या शरीर दिखता हो नीला, सांस लेने में हो परेशानी, अगर दूध पीने में हो कठिनाई, सांस चलती हो तेज या धंसी लगती हो छाती, त्वचा पर हो छोटी फुंसियां 10 या फिर दिखे बड़ा फोड़ा, नवजात लगे सुस्त या बेहोश या पड़ता हो उसको दौरा, फूला हुआ लगे पेट, हो दस्त या हो रहा हो किसी अंग से रक्त स्त्राव, कटा फटा हो होंठ, चिपका हो तालू, सर में पड़ी हो गांठ, समझ लो बच्चे की है हालत खराब। इन लक्षणों का तुम लेना सारा ज्ञान, अच्छे से सब कर लो इनका ध्यान, देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना और अपने बच्चे को तुरंत SNCU ले जाना। आपका ख्याल ही आपके परिवार को स्वस्थ रखता है, इसीलिए ना करना इन लक्षणों को नजरअंदाज, क्योंकि फर्क पड़ता है।
1: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की में आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये कैसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM।

0: अरे भैया रामू।
1: हाँ भैया श्यामू।
0: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
1: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
0: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
1: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
2: तो अभी चलो।
3: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: बाबूजी जरा धीरे चलो। आज मैं बात कर रहा हूँ कि बारिश के मौसम में किस तरीके से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि सच बात तो एक है, सेहत सही तो लाभ गई। और सच कहते हैं जो कहते हैं कि जान है तो जहान है। बारिश के मौसम में सुरक्षित चलिए, स्पीड का ध्यान रखिए, यानी कि थोड़ी कम रखिए स्पीड, क्योंकि आगे गड्ढा है, क्या है कुछ नजर नहीं आता। बारिश के समय में बिजली के खंभों में करंट उतर जाता है, तो उससे भी अपने आप को बचा कर रखना है। बारिश के मौसम में पेड़ गिर जाते हैं तो घटना दुर्घटना घट सकती है। जब आप ऑन रोड हैं तो सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। इसके अलावा बारिश के मौसम में सेहत को तंदुरुस्त बनाने के लिए क्या करें क्या ना करें उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात आती है खान पान का। जब खान पान का मैं जिक्र करता हूं तो बात निकल कर ये सामने आती है, एक्सपर्ट कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि उबला हुआ पानी पीजिए, यानी कि पानी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए हमेशा पानी उबाल कर या फिल्टर कर आप पिए। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें आप ले सकते हैं, काढ़ा, हर्बल टी, अदरक वाली चाय या गर्मा गर्म सूप आप पी सकते हैं। बाहर के खाने से यानी कि अपने आप को बचा कर रखिएगा। स्ट्रीट फूड, चाट और पहले से कटे हुए फल बिल्कुल आप ना खाएं, इनमें इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा होता है। पत्तेदार सब्जियों से आप परहेज करें, इस मौसम में हरे पत्तेदार सब्जियों में कीड़े और बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं। तो ये कुछ खास बातें, इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और भी कुछ बातें हैं उसके बारे में जानेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरशारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
1: बेहतर? बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
0: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
1: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
0: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
2: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
0: कल ही डॉट्स सेंटर चला जा।
1: कल नहीं, अभी।
2: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। बारिश के मौसम में किस तरीके से हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्या करें क्या ना करें, ये जानना बहुत जरूरी है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि बारिश के मौसम में ऑन रोड जब आप चल रहे होते हैं, जल भराव की वजह से कहीं कोई गड्ढा है हमें नजर नहीं आता, इसलिए सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे। अपनी गाड़ी की जो स्पीड तय है उसे थोड़ा कम रखिए। इसके अलावा घर से थोड़ा 5 से 10 मिनट पहले आप निकलें ताकि ऑफिस आप समय पर पहुंच पाएं। बिजली के खंभों में करंट आ जाता है, उससे अपने आप को बचा कर रखिए। और ऑन रोड अक्सर पेड़ गिर जाते हैं, तो वहां पर कोई घटना दुर्घटना ना घटे, वहां से अपने आप को बचा कर निकालिएगा। और कुछ खास बातें जैसे कि घर की देखभाल के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि खान पान का ध्यान रखिएगा, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें आप खा सकते हैं और बाहर के खाने से परहेज करेगा। अब बात कर लेते हैं घर की देखभाल की, यानी कि होम केयर। मच्छरों को पनपने न दें, क्योंकि जब बीमारी नहीं होगी और सेहत सही होगी तो लाभ कई होंगे। घर के आसपास कूलर या गमलों में पानी जमा न होने दें ताकि डेंगू मलेरिया से बचाव हो सके। सीलन और फंगस से अपने आप को बचा कर रखें। अलमारी और कपड़ों को सूखा रखने के लिए कपूर या सिलिका जेल के पाउच का इस्तेमाल आप करें। वेंटिलेशन जरूरी है, जब बारिश थमे तो थोड़ी देर खिड़कियां खोलें ताकि घर के अंदर की नमी और उमस कम हो सके। सफर आपका सुरक्षित रहे इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, यानी कि अगर आपका बदन गीला है, कपड़े गीले हैं तो तुरंत बदल लें। अगर आप बारिश में भीग कर आ रहे हैं तो तुरंत नहाकर सूखे कपड़े पहने ताकि सर्दी खांसी ना हो। रेन गियर साथ रखें, यानी घर से बाहर निकलते समय छाता या रेनकोट हमेशा अपने साथ रखें। गाड़ी धीरे चलाएं, यानी सड़कों पर फिसलन और जल भराव यानी कि वाटर लॉगिंग के कारण दुर्घटना का खतरा रहता है, इसलिए स्पीड कम रखें। और वर्क फ्रॉम होम लोगों को मिल जाता है, मिलना शुरू हो जाता है, तो ऐसे में आप घर पर रहकर अपनी फैमिली के बीच में वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, पसंदीदा फिल्में देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं और मनोरंजन के लिए बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। एफएम यही कहता है कि सेहत सही तो लाभ कई। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए वन एंड ओनली रेडियो एफएम सुनो शारदा 90.8 एफएम, जो कि अपने ग्रेटर नोएडा का एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। आज हम बात करने वाले हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, जिसे हम आयुष्मान PMJAY के नाम से जानते हैं। ये देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। 9 करोड़ से ज्यादा परिवार इसके दायरे में आते हैं और हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता है। आयुष्मान PMJAY योजना गरीब परिवारों को महंगे इलाज के खर्च से बचाती है और समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराती है। आज के एपिसोड में हम खास तौर पर जानेंगे कि बुजुर्गों के लिए इस योजना में क्या क्या सुविधाएं हैं। साथ ही बात करेंगे कि आशा और ANM जैसे स्वास्थ्य कर्मी की इसमें क्या भूमिका होती है, अस्पतालों में क्या सहूलियत मिलती है और मरीजों को किस तरह की फॉलो अप केयर दी जाती है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आप जानते हैं आपकी जानी पहचानी टीकन भाभी हमारे साथ में हैं। तो सबसे पहले टीकन भाभी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद आरजे भैया। आज बुजुर्गों की बात हो रही है तो हमारे गांव के केदार बाबा की याद आ गई। बाबा की उम्र होगी 72-73 साल। कुछ समय पहले तक खेती करते थे पर अब बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता। कुछ महीनों से सीने में दर्द रहता था, सांस भी जल्दी फूल जाती थी, पर बाबा सोचते रहे कि इलाज कैसे कराएं, पैसा कहां से आएगा। एक दिन हालत ज्यादा खराब हो गई तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ था। अस्पताल पहुंचते ही कार्ड स्कैन हुआ और तुरंत जांच शुरू हो गई। डॉक्टर साहब ने बताया कि दिल की नसें ब्लॉक हो रही हैं। समय रहते ही उनकी एंजियोप्लास्टी हो गई और 1 रुपए भी नहीं लगा। पूरा खर्च आयुष्मान योजना ने उठाया। बाबा को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि बिना पैसे के भी इतना बड़ा इलाज हो सकता है।
0: बिल्कुल टीकन भाभी, यहाँ एक बात और साफ कर दीजिए, आयुष्मान PMJAY में 70 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति देखकर शामिल किया जाता है या बगैर शर्त इलाज होता है?
1: देखिए, आयुष्मान PMJAY में 70 साल से ज्यादा उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति देखे बिना ही लाभ दिया जाता है। मतलब चाहे बुजुर्ग गरीब हो या ठीक ठाक हाल वाले हो, उनकी उम्र 70 साल पार हो गई तो उन्हें सीधे आयुष्मान योजना के तहत इलाज मिल सकता है। तो 70 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों के लिए ये योजना किसी सहारे से कम नहीं है। बस उनका इलाज जल्दी और अच्छे अस्पताल में हो जाए, यही इस योजना का मकसद है।
0: टीकन भाभी, बुजुर्गों की इस योजना में किन किन बीमारियों का इलाज होता है, साथ ही ये भी बताइए क्या इलाज सिर्फ सरकारी अस्पताल में या फिर निजी अस्पताल में भी करवाया जा सकता है?
1: देखिए आरजे भैया, आयुष्मान PMJAY में बुजुर्गों का सिर्फ बुखार खांसी वाला इलाज ही नहीं होता, बल्कि कैंसर, दिल की बीमारी, किडनी की खराबी, मोतियाबिंद, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे कई गंभीर रोगों का भी इलाज मुफ्त किया जाता है। प्रोस्टेट का कैंसर हो, घुटना बदलवाना हो, कूल्हा रिप्लेस करवाना हो या फिर न्यूरो की बड़ी सर्जरी, ये सब इस योजना में शामिल है। जहाँ तक अस्पताल का सवाल है तो इस योजना में देश भर के हजारों निजी और सरकारी दोनों तरह के अस्पताल शामिल हैं। मरीज को बस आयुष्मान कार्ड लेकर जाना है। अस्पताल में कार्ड स्कैन हुआ नहीं कि कैशलेस और पेपरलेस इलाज शुरू हो जाता है।
0: टीकन भाभी, एक खास सवाल तो पूछना ही भूल गया, छोटे बच्चों का आयुष्मान PMJAY में इलाज कैसे होता है, क्या उनके लिए अलग कार्ड बनवाना पड़ता है?
1: अरे नहीं आरजे भैया, छोटे बच्चों का अलग कार्ड नहीं बनवाना पड़ता। जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चे अपने माता पिता के आयुष्मान कार्ड पर ही इलाज करवा सकते हैं, यानी इस उम्र के बच्चे के लिए अलग कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। बस माता या पिता का आयुष्मान कार्ड दिखाएं और बच्चे का पूरा इलाज आराम से हो सकता है।
0: टीकन भाभी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि अस्पताल में भर्ती होने के दौरान कौन कौन सी चीजें इस योजना में शामिल हैं? क्या सिर्फ दवाइयां मिलती हैं या टेस्ट, खाना, बेड वगैरह भी इसमें आते हैं?
1: असल में आरजे भैया, योजना की खासियत यही है, जब मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो इलाज से लेकर दवा तक सब कुछ कवर होता है। मान लीजिए किसी को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ गई। अब भर्ती होने से 3 दिन पहले तक डॉक्टर का परामर्श, जरूरी टेस्ट और दवाइयाँ, ये सब भी योजना के अंदर आ जाते हैं। मतलब मरीज को भर्ती होने से पहले जो जांच करानी होती है उसका भी पैसा नहीं लगता। फिर जब अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं तो पूरा इलाज योजना के तहत चलता है। टेस्ट हो, एक्सरे हो, खून की रिपोर्ट हो, दवाइयां हो, इंजेक्शन हो, सब आयुष्मान PMJY में शामिल है। अस्पताल का बेड, ICU या सामान्य वार्ड में रहना, नर्सिंग चार्ज, खाना सब फ्री है। तो सीधी बात ये है कि PMJY योजना अस्पताल में भर्ती होने से पहले, भर्ती के दौरान और इलाज चलने तक हर जरूरी खर्च उठाती है।
0: अच्छा भाभी, एक और सवाल आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा। हम बात कर रहे हैं आज के कार्यक्रम में आयुष्मान PMJY की, तो आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी क्या ये योजना मदद करती है?
1: बिल्कुल करती है। मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 15 दिन तक फॉलो अप इलाज भी आयुष्मान PMJY में मिलता है, जैसे दोबारा चेकअप, दवाइयाँ या छोटी जांच। यानी इलाज के बाद भी चिंता नहीं करनी पड़ती है।
0: भाभी, क्या आयुष्मान योजना पूरे देश में चलती है? मतलब अगर कोई अपने राज्य से बाहर चला जाए तो भी इस योजना के अंतर्गत अपना इलाज करवा सकता है?
1: हाँ बिल्कुल RJ भैया, यही तो इस योजना की खास बात है। आयुष्मान कार्ड वाले लोग भारत के किसी भी लिस्टेड अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं, चाहे वह अपने राज्य में हो या किसी दूसरे राज्य में। ये उन लोगों के लिए बहुत काम की चीज है जो दूसरे राज्य में काम करते हैं, जैसे प्रवासी मजदूर या फिर जो रिश्तेदारों से मिलने बाहर जाते हैं। मसलन अगर उत्तर प्रदेश का कोई परिवार दिल्ली, महाराष्ट्र या तमिलनाडु कहीं भी हो तो वो वहाँ भी इलाज फ्री में करा सकता है।
0: टीकन भाभी, सेहत की रक्षा में ANM और आशा की अहम भूमिका होती है, तो आयुष्मान PMJY में क्या क्या करती हैं ये आशाएं और ANM बहन जी?
1: देखिए RJ भैया, आशा और ANM की आयुष्मान PMJY में खास जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो ये अपने इलाके के सभी परिवार का रिकॉर्ड बनाती हैं, जो आयुष्मान योजना के दायरे में आते हैं। ई कवच ऐप में एक परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रजिस्टर होता है। इसमें परिवार का नाम, उसकी आयुष्मान कार्ड वाली जानकारी सब कुछ भरना पड़ता है। फिर ANM और आशा घर घर जाकर लोगों को आयुष्मान PMJY योजना समझाती हैं। कौन पात्र है, कार्ड क्यों जरूरी है, इससे इलाज कैसे मिलेगा, सब एकदम आसान भाषा में लोगों को बताती हैं। गांव की मीटिंग में भी अक्सर ये बातें बताती रहती हैं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। ANM और आशा का सबसे जरूरी काम तो तब शुरू होता है जब किसी मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिलती है। ये दीदियाँ एक हफ्ते के अंदर मरीज से मिलने जरूर जाती हैं। डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी हैं, विजिट की जो तारीख बताई है, सब चेक करती हैं और मरीज को ठीक से समझाती हैं। अगर किसी नवजात को स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट से डिस्चार्ज किया गया हो तो उसकी देखभाल में आशा दीदी और भी ज्यादा सतर्क रहती हैं। माँ को हर छोटी बड़ी बात समझाना बेहद जरूरी होता है। यदि मरीज को अचानक कोई समस्या हो जाए तो तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल पहुँचाने का इंतजाम भी कर देती हैं। इनका काम यहीं खत्म नहीं होता, ये हर मरीज का रिकॉर्ड रखती हैं, जैसे नाम, आयुष्मान कार्ड नंबर, किस अस्पताल में भर्ती था, कब छुट्टी मिली, अगला फॉलो अप कब है, सब लिख कर रखती हैं ताकि किसी भी मरीज को परेशानी ना हो।
0: टीकन भाभी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे भाभी, आजकल सब कुछ मोबाइल पर हो जाता है, तो आयुष्मान योजना में भी क्या कोई ऑनलाइन सुविधा है जिससे लोगों को घर बैठे मदद मिल सके?
1: बिल्कुल RJ भैया, आयुष्मान योजना तो ऑनलाइन सुविधा में भी आगे है। इसमें ऑनलाइन समाधान बहुत आसान बनाया गया है। सबसे पहले तो 24 घंटे चलने वाला हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-4444 है। किसी भी समय कॉल करिए और अपनी समस्या बता दीजिए, तुरंत जवाब मिल जाता है। फिर इसकी वेबसाइट www.pmjy.gov.in है। आदमी घर बैठे मोबाइल से ही चेक कर सकता है कि उनका नाम सूची में है या नहीं और कौन कौन से अस्पताल इसमें जुड़े हैं। वेबसाइट पर एक चैटबॉट भी है जिसमें आप बस अपना सवाल टाइप कीजिए और तुरंत जानकारी सामने आ जाती है, जैसे किस अस्पताल में इलाज मिलेगा, कौन सी बीमारी कवर है, कार्ड की स्थिति क्या है, सब मिनटों में पता चल जाता है। यानी अब लोगों को अस्पताल के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस मोबाइल उठाएं और जरूरी जानकारी वही मिल जाएगी।
0: लेकिन भाभी, अगर किसी को अपने आसपास आयुष्मान PMJAY का अस्पताल खोजना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है?
1: इसके लिए आयुष्मान सारथी मोबाइल ऐप सबसे बढ़िया है। इस ऐप में सब कुछ है। पहले ऐप खोलें, इसके बाद अपनी पसंद की भाषा चुनें, फिर जिस तरह की बीमारी के लिए विशेषज्ञ चाहिए वो विशेषज्ञता चुनें। अब आप चाहें तो जिले के आधार पर खोजें या फिर अपने आसपास की दूरी के आधार पर अस्पताल चुनें। जैसे ही आप अस्पताल चुनते हैं तुरंत गूगल मैप्स खुल जाता है। अब आप रास्ते का पालन करें और मैप आपको सीधे आयुष्मान PMJAY वाले अस्पताल तक पहुंचा देगा। आयुष्मान सारथी ऐप हर समय हर जगह नजदीकी अस्पताल दिखाकर लोगों की मदद करता है।
0: टीकन भाभी, आयुष्मान PMJAY तो बहुत ही अच्छी योजना है। आप तो रोज लोगों से मिलती हैं, तो लोगों को इससे क्या फायदा हुआ है? मतलब जमीनी स्तर पर इस योजना से क्या बदलाव आया है?
1: इस योजना ने गरीब लोगों की बड़ी बड़ी परेशानियां हल कर दी। पहले जो परिवार महंगे इलाज के डर से अस्पताल जाने की सोच नहीं पाते थे, आज वही लोग बिना झिझक बड़े अस्पताल में इलाज करा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। गांव में तो कई लोग पैसे की चिंता में इलाज टालते रहते थे।
1: बिल्कुल आरजे भैया, और अब वही लोग समय पर ऑपरेशन करा लेते हैं, दिल का हो, कैंसर का हो या हड्डी का हो। बहुत से बुजुर्ग जिनका इलाज सालों से अटका था, अब अच्छे डॉक्टर से आराम से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कई परिवार कर्ज में डूबने से बच गए। आयुष्मान PMJAY ने भरोसा दिया है कि गरीब आदमी भी सम्मान के साथ बिना डर के बड़े से बड़ा इलाज करा सकता है।
0: तो दोस्तों, आयुष्मान PMJAY योजना ने वाकई लाखों गरीब परिवारों की मदद की है। कई लोग जो पहले महंगे इलाज का नाम सुनकर ही घबरा जाते थे, आज बिना पैसे दिए बड़े अस्पतालों में भर्ती होकर सर्जरी करवा पा रहे हैं। श्रोताओं, हमारा मकसद भी यही है कि आप तक वो सारी बातें पहुंचें जो आपकी जिंदगी में काम आए, आपकी सेहत सुरक्षित रहे और वक्त पर सही फैसले लेने में मदद करे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड के साथ, भरोसेमंद और काम की जानकारी लेकर। पर जाने से पहले लेंगे सेहत की शपथ।
2: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे।
3: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे।
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
3: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
3: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
3: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
3: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
2: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
3: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
3: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
2: सेहत सही तो लाभ कई।
3: सेहत सही तो लाभ कई।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका वही मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सही लाभ गई। और आज हम एक अहम विषय पर बात करने वाले हैं। जी हां, नवजात मतलब न्यू बॉर्न बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ आज का हमारा एपिसोड है। लेकिन इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे गांव की गुड़िया बहन ने एक दिन एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का वजन थोड़ा कम था और वो दूध भी ठीक से नहीं पी रहा था। घर वालों को लगा कि ठंड लग गई होगी। दो घंटे ऐसे ही बीत गए, तभी उनकी पड़ोसन ने कहा, अरे बहन, पास के अस्पताल में NBSU है, चलो वहीं दिखाओ। और जैसे ही बच्चा वहां पहुंचा, वामर लगाया गया, दूध पिलाने में मदद मिली और कुछ ही घंटों में बच्चा थोड़ा संभल गया। अगर वो वहीं घर पर इंतजार करती रहती न जाने क्या हो जाता। इसीलिए आज हम समझेंगे कि NBSU और SNCU कैसे हमारे नवजात बच्चों की जिंदगी बचाते हैं। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है आपके जाने पहचाने और सबके अपने गांव के स्वास्थ्य साथी सेहतिया सिंह।
1: धन्यवाद आरजे बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए और बहुत बहुत प्यार गांव के सारे माता पिता और श्रोताओं को। आपने बिल्कुल सही समय पर बात उठाई है दोस्तों। नवजात बच्चे नन्हे जरूर होते हैं पर उनकी बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है। लेकिन कपूर साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा
0: जी।
1: हमारा फर्ज बनता है कि हम बच्चों का और विशेषकर अपने बुजुर्गों का

0: मत्स्य दूत और KMC यानी कि कंगारू मदर केयर बहुत महत्व रखती है। साथ ही दोनों ही यूनिटें सरकार की नवजात देखभाल गाइडलाइन के हिसाब से चलती हैं।
1: लेकिन सियातिया भैया, सबसे बड़ा सवाल, फर्क क्या है दोनों में?
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। फर्क तो है पर समझना आसान है, और आसान शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तो देखभाल का स्तर NBSU बुनियादी देखभाल देता है, जैसे कम वजन, हल्का सांस का दिक्कत, दूध न पी पा रहे हो या ठंड लग जाए। लेकिन SNCU ये गंभीर नवजात के लिए है, जहां सेप्सिस, सेवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, दौरे, बहुत कम वजन या प्री टर्म बच्चों का इलाज होता है।
1: और सियातिया भैया, दोनों की लोकेशन भी अलग होती है?
0: हाँ बिल्कुल, NBSU हमारे CHC या सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में होता है, यानी गाँव के करीब। SNCU जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में, जहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं।
1: और भैया, इसके अलावा सुविधाओं और बेड में भी फर्क होता होगा?
0: सही कहा आरजे साहब, NBSU में 4 से 6 बेड, वार्मर, ऑक्सीजन, सक्शन, ग्लूकोज और शुरुआती दवाएं। वहीं SNCU 12 से 20 बेड, CPAP, एडवांस मॉनिटर्स, फोटोथेरेपी, इन्फ्यूजन पंप्स और गंभीर बीमारी का पूरा सेटअप।
1: इसके अलावा भैया, स्टाफ का अंतर भी समझा दीजिए।
0: भाई क्यों नहीं, NBSU में स्टाफ नर्स और मेडिकल ऑफिसर होते हैं, और SNCU में बाल रोग विशेषज्ञ, ट्रेन नर्सेज और स्किल्ड न्यूनेटल केयर टीम होती है।
1: अच्छा भैया, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितने दिनों के लिए बच्चा इसमें रहता है?
0: भाई NBSU में अक्सर कुछ घंटों से लेकर 1 से 2 दिन, SNCU में कई दिनों से लेकर 2 से 3 हफ्ते भी लग सकते हैं।
1: और रेफरल सिस्टम?
0: यानी NBSU में अगर बच्चा स्थिर न हो तो वहीं से 102 या 108 एम्बुलेंस से SNCU रेफर किया जाता है। SNCU अंतिम स्तर है, बहुत ही कम मामलों में आगे भेजना पड़ता है।
1: अच्छा भैया, अब एक कहानी और सुनाइए ताकि श्रोता समझ सके कि समय पर सही यूनिट चुनना कितना जरूरी है।
0: मेरे पास एक याद हमेशा रहती है भाई। एक बार सुशीला और रमेश अपने नवजात बच्चे को NBSU लेकर आए। बच्चा हल्का ठंडा पड़ गया था और दूध नहीं पी पा रहा था। टीम ने उसे वार्मर में रखा, दूध पिलाने में मदद की और कुछ ही घंटों में बच्चा ठीक हो गया। पर वहीं सुगम और उसकी पत्नी विमला ने देर कर दी। बच्चा पहले से ही गंभीर था और उन्हें सीधे SNCU जाना पड़ा। वहाँ टीम ने पूरी मेहनत की, CPAP लगी, दवाएं दी और कई दिन बाद बच्चा ठीक होकर घर आया। तो RJ बाबू, इन दोनों कहानियों से इतना ही पता चलता है कि NBSU बच्चे की पहली सुरक्षा है और SNCU उसकी उन्नत सुरक्षा। दोनों मिलकर हजारों बच्चों की जान बचाती हैं।
1: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात कही आपने सियातिया भैया। तो श्रोताओं, याद रखिए, बच्चा हल्की समस्या में है तो NBSU, और यदि आपको लगे कि बच्चा गंभीर दिख रहा है तो SNCU। बस देरी ना करें, नवजात का एक एक मिनट जीवन का फैसला कर सकता है। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए आपका अपना कम्युनिटी रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM। फिलहाल के लिए नमस्कार।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.
4: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
5: जी
4: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
5: जी सर, आज का सब्जेक्ट है
3: टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान।

0: टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत से ही लाभ के, और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं, सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर के एक स्वास्थ्य जन जागरूकता मुहिम चला रहे हैं, जिसका नाम है सेहत से ही लाभ कई, ताकि हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो सब जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दें। और आप सभी जानते हैं, इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बीमारियां भी होती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर आर के शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है, तो किस तरह से लोग अपना इस मौसम में ध्यान रखें?
2: इस मौसम में सबसे पहले ये है कि धूप में काम कम से कम करें, सुबह शाम ज़्यादा करें, धूप में सिर पर कपड़ा रख के चलें, पानी बोतल या साथ में इलेक्ट्रॉल ORS या जो भी चीज़ अवेलेबिलिटी हो, या घर से अपने एक छाछ, बेलपत्थर का जूस या जो भी जूस लेकर चल सकते हैं वो लेकर चलें साथ में, ताकि बीच में कहीं उसे पी सकें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, गर्मी हो या मौसम खराब हो, जो काम करने वाले हैं उनको तो अपना काम करना ही है, जाना ही है।
2: काम बहुत जरूरी है, काम बिना तो कुछ नहीं है।
1: तो काम पर जो लोग जाते हैं, खास करके जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो उनको कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए?
2: उनको यही, सिर पर कपड़ा रखें हर समय
1: जी।
2: दूसरा ये कि कम से कम जो है, मतलब ऐसे ही समय, यदि देखें बहुत ज्यादा चिलचिलाती धूप है, 2 घंटे का टाइम, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस समय थोड़ा सा जो है कम काम करें या रेस्ट,
1: और
2: सुबह बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं, शाम को भी देर तक काम कर सकते हैं, उस समय थोड़ा ठंड रहती है, पैर में जो है सब ज़्यादा परेशानी आती है।
1: तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो काम है उसको, जो मौसम ठंडा ठंडा होता है थोड़ा, तो उसी में निपटा दें, और जो धूप होती है
2: उसमें आराम करें,
1: उसमें आराम,
2: वहाँ भी जगह मिल जाए, अपना लेबर है तो अपना कहीं पेड़ है कुछ है या शेड है, कहीं भी किसी तरह का जगह है उनको वहाँ पर अपना।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि धूप से गर्मी से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, अब ये जो मौसम होता है ना, बीमारियां भी हो जाती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं इस मौसम में?
2: खास तौर से जो है आपको, एक तो उल्टी दस्त आते हैं, दूसरा बाजार का खाना पीना कहीं खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली तो गला खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, उससे लूज मोशन हो जाते हैं, तो बचाव करें। बाजार का खाना कम से कम खाएं, ना खाएं तो अच्छा है, और यदि बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो बहुत हल्का या कम खाएं।
1: तो जैसे आपने बताया कि दस्त की बीमारी हो जाती है, उल्टी की बीमारियां भी हो जाती हैं,
2: हो जाता है, बुखार आ जाता है,
1: बुखार भी आ जाता है, अब बच्चों में जैसे डायरिया भी होता है, तो इसके क्या कुछ कारण हैं?
2: डायरिया का भी एक मेन कारण है धूप में, यदि घर में रहते तो नहीं होता इतना, लेकिन बाहर के आना जाना रखते हैं, औरतें हैं बच्चों को लेकर कहीं रिश्तेदारी में आना जाना कर रही हैं, और धूप में गर्मी में है तो उनको उल्टी दस्त के ज़्यादा चांसेस है।
1: तो जिन बच्चों को मान लीजिए डायरिया हो गया है, कभी ऐसा देखा जाता है उल्टी भी है और उसको
2: लूज मोशन भी है,
1: तो किस तरह से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है?
2: सबसे पहले तो उनको यही है कि थोड़ा सा उसको कोई उल्टी के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टी जब तक नहीं रुकेगी दस्त वाली दवा भी नहीं पचेगी, तो सबसे पहले उसको उल्टी कंट्रोल करने के लिए लिक्विड आता है उल्टी के रोकने के लिए, उसके बाद ORS का पानी पिलाइए उसको, ORS का लिक्विड भी आता है रेडीमेड बना हुआ, और ORS का जो पैकेट घोल के बना सकते हैं। तीसरा, फिर उसको दस्त की दवा दें, कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है, इन्फेक्शन नहीं है पेट में ज़्यादा तो खाली जो है दूध मोशन के लिए कोई टैबलेट वगैरह या लिक्विड में दे सकते।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दराज में कोई रहते हैं, मान लीजिए रात में ये दिक्कत हो गई, अब वो डॉक्टर साहब के पास जा नहीं सकते उस दौरान, तो उस दौरान वो क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं?
2: घरेलू उपाय हैं, नमक चीनी का घोल ले सकते हैं, ORS तो लगभग गाँव गाँव आजकल सब जगह मिल जाता है, क्योंकि आशा आंगनबाड़ी के सबके पास में ORS रहता, तो ORS का पानी तो पिला ही दें कम से कम, यदि और दवा भी नहीं मिलती है तो, और दवा मिल जाए आप, क्योंकि अब तो स्टोर भी काफ़ी लगभग हर गांव में एक आध कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वहाँ से उल्टी की दवा तो ले ही सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप ORS की सिफारिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या चीज़ है ये ORS?
2: एक जीवन रक्षक घोल है
1: जी,
2: और खाली दस्त उल्टी के लिए नहीं है ये, किसी भी हीट स्ट्रोक में, गर्मी के समय में, या आप तो देख रहे हैं कि हमें थकान भी हो रही है कहीं पे, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तब भी ORS का घोल जो होता है काम।
1: तो कहने का मतलब आपका यही हो गया कि अगर मान लीजिए कोई हमें बीमारी भी नहीं है गर्मी के मौसम वाली,
2: तब भी उसको ले सकते हैं,
1: तब भी हम उसको ले सकते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है कि भाई हम अपने स्वस्थ रहें, तो किस तरह से उसकी दिनचर्या होनी चाहिए?
2: दिनचर्या तो यही है कि सुबह जल्दी उठे
1: जी,
2: कुछ एक्सरसाइज व्यायाम अपना करें, काम भी करें लेकिन व्यायाम सबसे पहले है, ताकि इससे इसमें फुर्ती आ जाए। दूसरा, कम खाना और गम खाना, ये दोनों चीज साधन ऐसी है जिससे हमेशा स्वस्थ रहोगे, मन भी शांत रहेगा और शरीर भी ठीक रहेगा।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, जो कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कही, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: बहुत अच्छा है प्रोग्राम आपका ये, और इस चीज़ को जागरूकता के लिए जगह जगह इसको सुनाया जाए, बताया जाए, जो भी अच्छे आपको जो है कहीं पे इस तरह की क्लिप मिलती है तो आपको जो बाहर उसको पब्लिक में सुनाया जाए।
1: आखिर में हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे?
2: गर्मी से बचें, थोड़ा सा जितना भी हो सकता है, जितना हो सकता है, ये नहीं कि काम बंद कर दें, बाहर का बाजार का खाना कम से कम खाएं, बहुत ही मजबूरी में बाहर का खाना खाएं, घरेलू लिक्विड जरूर लें, मट्ठा हो, कोई मैंगो का जो आजकल जैसे पना बना लेते हैं वो ले लो, बेल पत्थर का जूस ले लो, ORS का पानी ले लो, ये घर से लेके चलें कुछ, और घर से एक बोतल पानी भी लेके चलें इसमें।
1: बिल्कुल डॉक्टर RK शर्मा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है रेडियो के माध्यम से, और हमारे जो सुनने वाले हैं, समुदाय के लोग हैं, ज़रूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे, और जो भी आपने बातें बताई हैं उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8।

FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो।

शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक इन समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, इस दुनिया में इंसान ही इंसान के काम आता है, ये आप बखूबी जानते हैं और ये अनुभव भी आपने किया होगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपसी संबंधों, प्रेम और सद्भाव का मानव जीवन में काफी महत्व है। आप दूसरों से जैसा व्यवहार करेंगे, वैसी ही छवि सामने वाले के मन में आपके प्रति बनेगी। इसीलिए दूसरों से प्रेम और सद्भावपूर्ण व्यवहार करें, जिससे कि आपकी छवि सुशील और संस्कारी मनुष्य की बने। हम किसी से जब भी मिलें तो मुस्कुराकर ही सामने वाले का स्वागत करें। मुस्कुराहट से सामने वाले पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो हमारी तरफ आकर्षित होता है और वो हमसे बात करना चाहता है। आपस में बातचीत करने के दौरान व्यक्ति की वाणी में मिठास होना चाहिए। मधुर और शिष्ट आवाज से सामने वाला भी प्रभावित होता है। जरा सोचिए कि हम इस संसार में आए हैं तो क्या साथ लेकर आए थे और क्या साथ लेकर जाएंगे। सब का सब यहीं पर रह जाएगा। अतीत से अब तक हमने देखा है कि कई राजा और रंक आए और सब के सब धूल में मिल गए। कोई कुछ लेकर गया है क्या? और दूसरी तरफ एक और बात है, किसान मित्रों के जिन जिन का नाम जीवित है तो वो उनके श्रेष्ठ कर्मों के कारण ही जीवित है, ना कि उनकी धन दौलत के कारण। समाज, घर परिवार में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। सुख यानी जन्मदिन, शादी ब्याह और खुशी के किसी भी पल में तो सभी चले आते जाते रहते हैं। किसान मित्रों, समाज और घर परिवार में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। सुख यानी जन्मदिन, शादी ब्याह और खुशी का कोई भी अवसर, तो इन सब में तो सभी आते जाते रहते हैं, पर व्यक्ति के दुख में सम्मिलित होना भी एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है और सामाजिकता के नाते हमें व्यक्ति का दुख बांटना चाहिए। किसी के दुख में सम्मिलित होकर दुखी परिवार को सांत्वना देना, ये कहना है कि चिंता ना करें, ईश्वर और हम आपके साथ हैं। तो जो दुखी परिवार होता है ना, उसको बहुत अपनेपन का एहसास होता है और उसका जो दुख है वो बहुत कम हो जाता है। इस प्रकार हम आपसी प्रेम और सद्भाव से हर किसी के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। और आइए अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं योगेंद्र निमचाना।

किसान मित्रों, अभी आप योगेंद्र निमचाना से ये उपदेश सुन रहे थे। किसान मित्रों, अक्सर आपके सामने एक समस्या जरूर आती होगी। कोई भी फसल आप करते हैं तो उसके कहीं ना कहीं अवशेष बच जाते हैं। अब उसका प्रबंधन है वो कैसे किया जाए? कम फसल होती है तो उसका तो ऐसा होता है कि हमारे किसान भाई बड़ी आसानी के साथ तो उसका प्रबंधन कर देते हैं, खाद के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, और भी कई तरीके हैं उस तरह से उसका प्रबंधन कर देते हैं। लेकिन आपके पास जमीन ज्यादा है, यानी कि आप फसल ज्यादा जमीन पर करते हैं, और उसके जब फसल अवशेष होते हैं तो उनका प्रबंधन करना एक सिरदर्द आपके लिए बन जाता है कि आपको उस फसल का निपटारा भी करना है, प्रबंधन भी करना है, और साथ ही साथ अगली जो फसल है उसकी तैयारी भी करनी है, तो एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो ऐसे में आप आधुनिक तकनीकों का सहारा लेकर के फसलों के जो अवशेष हैं उनका प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं। तो उन्हीं कुछ तकनीकों के बारे में हम आज आपको बताएंगे कि जो तकनीकी हैं उनका इस्तेमाल करके आप किस तरह से अपनी फसलों के अवशेष का प्रबंधन कर सकते हैं। किसान मित्रों, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी कृषि अवशेष प्रबंधन के लिए कई समाधान प्रदान करती है, जिसमें रोटरी डिस्क ड्रिल जैसी मशीनों का उपयोग शामिल है, जो फसल अवशेषों को जलाने के बजाय सीधे बीज बोने में मदद करती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और प्रदूषण कम होता है। इसके अलावा मल्चिंग, डिकम्पोजर का उपयोग और जैव ऊर्जा रूपांतरण प्रौद्योगिकियां जैसे गैसीकरण और ब्रिकेटिंग भी अवशेषों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में मदद करती हैं। अब बात आती है कि जो फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए, निस्तारण के लिए जो आधुनिक तकनीकियां हैं, मशीनें हैं, वो कहां पर मिलती हैं, कैसे आप इनको ले सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि जो मशीनें वो तो बहुत सारी महंगी हो गई, और हर किसी किसान भाई के बस में ये बात नहीं है कि वो उन मशीनों को खरीद पाए। अगर हाँ, किसान भाई खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी की योजना भी चलाई जा रही है, जिसका वो लाभ ले सकते हैं। और पराली प्रबंधन है या आपकी जो फसलों के अवशेषों का प्रबंधन करने के लिए जो भी मशीनें आ रही हैं उनकी पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद आप इनको खरीद सकते हैं। अब जानकारी कहाँ पे मिले कि इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, कहाँ पे होती है और कैसे इन मशीनों को खरीदा जाए? तो सबसे अच्छा इसका उपाय यही है कि आपके पास जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर जाकर के आप संपर्क करिए। अब बात आती है वो हमारे किसान बहन भाई जिनके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो कैसे इन आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल अपने फसलों के अवशेष प्रबंधन में करें? तो उसके लिए सरकार ने कस्टम हायर सेंटर बनाए हुए हैं, जहां पर आप कोई भी कृषि उपकरण जाकर के ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल करने के बाद आप वहां पर उसको जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कृषि कार्य कर सकते हैं और अपनी फसलों के अवशेषों का प्रबंधन कर सकते हैं। किसान मित्रों, आगे आपको ये भी बताएंगे कि फसलों के अवशेष प्रबंधन से क्या फायदे हैं, क्यों करना चाहिए, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक रागनी, कलाकार हैं प्रियंका चौधरी, और किस्सा रहेगा गोपी चंद का।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रियंका चौधरी से ये रागनी, और किस्सा था गोपी चंद का। और इस रागनी से पहले हम बात कर रहे थे कि फसलों के अवशेष का प्रबंधन क्यों करना चाहिए और इससे हमें क्या लाभ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम फसलों के अवशेष का प्रबंधन नहीं करते हैं, अगली फसल की जल्दबाजी में हम उनको जला देते हैं, तो उससे हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित होता है और उसका प्रभाव फिर हमारी फसलों पर, हमारे स्वास्थ्य पर और पता नहीं कितनी जगह पर फैलता है। तो तकनीकी तरीके से हम अपनी फसलों के अवशेषों का प्रबंधन करते हैं तो हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा लेते हैं। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए धान की पराली है, उसका प्रबंधन आप कर रहे हैं तो उसको आप चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे आजकल चीजें बनाई जा रही हैं धान की पराली से, तो वहां पर बेच करके आप पैसा भी कमा सकते हैं, तो आपका ये भी फायदा हो जाएगा। और फसल अवशेषों का खाद के रूप में इस्तेमाल हम जब करते हैं तो हमारे जो खेत की मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। और इसके अलावा कृषि अवशेषों को जैव ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो किसान मित्रों, कहने का मतलब यही है कि जब आप आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल अपने फसल के अवशेषों के प्रबंधन में करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ है। और इस तकनीक में जो भी मशीनें हैं या कृषि यंत्र हैं जो उपयोग में लाए जाते हैं फसलों के अवशेष प्रबंधन में, तो उनकी सारी की सारी जानकारी आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर के ले सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही आधुनिक तकनीकों के माध्यम से फसलों के अवशेष प्रबंधन की। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना और टीना पटौदी। किस्सा रहेगा जानी चोर का।

किसान मित्रों, इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा 90.8 FM महिलाओं का सम्मान करता है, उनके हक की बात करता है, और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक विशेष श्रृंखला के तौर पर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसमें हमें सहयोग मिला है स्मार्ट संस्था का, और जिन विषयों पर समय दर समय हम बात कर रहे हैं वो विषय हैं जैसे कि मेरी पत्नी, मेरा अधिकार, दहेज प्रथा या हत्या, कैसे बचे मनचलों से, कच्ची उम्र की शिक्षा, माँ मुझे बाहर जाना है, पितृसत्ता, असमान व्यवहार, असमान दीक्षा, खतना धर्म नहीं दर्द, बालिका या वधू, और बेटियां हैं तो वंश है यानी प्रजनन अधिकार। तो इस तरीके से हर एक मुद्दे पर हम खुलकर बातें कर रहे हैं, और हम आपको बताना चाहेंगे

0: विशेष कार्यक्रम में हमें दूसरे सामुदायिक रेडियो स्टेशन का भी सहयोग मिल रहा है, और ये भी सच है कि दूसरे स्टेशन हमारे खास प्रोग्राम को अपने यहाँ से ऑन एयर करते हैं। इसी समझौते के तहत हम दूसरे स्टेशन के कार्यक्रम आज यहाँ से ऑन एयर कर रहे हैं, जिसमें हमें सहयोग मिल रहा है लाउड स्पीकर 90 FM का। आइए सुनते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और सुनते हैं हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम।
1: हिंसा को नो।

0: नमस्कार। आज के हमारे कार्यक्रम हिंसा को नो में आप सबका स्वागत है और ये कार्यक्रम हम स्मार्ट की सहायता से प्रस्तुत कर रहे हैं। हिंसा एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर ही एक डर सा लगता है। जरूरी नहीं कि हिंसा मारपीट या शारीरिक प्रताड़ना ही हो। कई बारी हमारे साथ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम हिंसा के रूप में नहीं मानते, उसे अपने जीवन का, समाज का एक हिस्सा, एक रीति मानते हैं। हिंसा को नो की हमारी अगली कड़ी में हम आज बात करने वाले हैं मेरे कानूनी अधिकार के बारे में, महिलाओं के कानूनी अधिकार के बारे में, क्या क्या कानूनी अधिकार प्राप्त हैं महिलाओं को। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं काउंसलर ऑफ फैमिली कोर्ट एंड लॉ एक्सपर्ट संगीता त्रिपाठी जी, और इनसे इस विषय पर चर्चा करेंगी हमारी सहयोगी सोनी पाठक। तो चलिए सुनते हैं महिलाओं के कानूनी अधिकार पर ये विशेष चर्चा।
1: मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद सोने जी।
1: मैम, मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये कानूनी अधिकार होते क्या हैं?
2: सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षित रूप से रहने के लिए कुछ उपबंध करते हैं
1: जी,
2: उनके स्वास्थ्य से संबंधित, उनके सामाजिक सरोकार से संबंधित, उसी के अंतर्गत कानून व्यवस्था भी मुहैया कराई जाती है। तो महिलाओं या आप सामूहिक रूप से समझ लें, सभी के लिए जो संविधान ने अधिकार प्रदत्त कराए हैं उनका पालन सुनिश्चित कराना और उनके अनुरूप व्यक्ति को सार्वभौमिक रूप से जीने का अधिकार प्रदान करना, ताकि वे सामाजिक विकास में अपने भूमिका अदा कर सके उनके संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए। तो कानूनी अधिकार वही है जो सामाजिक रूप से, वांछनीय रूप से राज्य स्तर और स्वयं के विकास के स्तर पर राज्य सरकार के साथ मिलकर सामाजिक विकास में अपना सतत प्रयास और निरंतर भूमिका अदा कर सके, ऐसे उपबंध होते हैं। अब महिलाओं की बात हम लोग कर रहे हैं सोनी
1: जी,
2: तो जब महिलाओं के कानूनी अधिकार हैं उनमें भी संविधान ने कुछ अनुबंध स्थापित किए हैं, उन्हीं अनुबंधों के अंतर्गत राज्य सरकार उनका पालन सुनिश्चित कराती है। सबसे पहले जो अधिकार होता है स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 19 में महिलाओं को ये स्पेशल तौर पे अधिकार दिया गया है कि वो देश के किसी भी हिस्से में नागरिक की हैसियत से स्वतंत्रता के साथ आ जा सकती हैं, रह सकती हैं, व्यवसाय का चुनाव कर सकती हैं और महिला होने के नाते किसी कार्य को करने के लिए मना करना उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा और ऐसा होने पे वो कानून की मदद ले सकती है। अब दूसरी बात आ जाती है जो विशेष तौर पे ध्यान देने वाली चीज है कि नारी की गरिमा का अधिकार भी संविधान प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 नारी की गरिमा की रक्षा करते हुए उनको शोषण से मुक्त जीवन जीने का अधिकार देता है। इसमें जैसे महिलाओं की खरीद बिक्री, वेश्यावृत्ति के धंधे में जबरदस्ती उनको भेज देना या भीख मांगने के लिए मजबूर करना, ये सारे ऐसे कृत्य होते हैं जो दंडनीय अपराध माने गए हैं और ऐसा करने वालों के लिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सजा का भी प्रावधान है। संसद ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 पारित किया और भारतीय दंड संहिता की धारा 361 से लेके 373 के अनुसार ऐसे अपराधी को 7 साल से लेके 10 साल तक के कैद की सजा और जुर्माने की सजा भुगतनी पड़ती है या फिर दोनों। इसी तरह अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 साल से अगर कोई कम उम्र के लड़के लड़कियों से काम करवाता है, खासतौर से लड़कियों के लिए कहा गया, तो वो बाल अपराध के अंतर्गत आएगा। घरेलू हिंसा अधिनियम भी बनाया गया 2005 में, जिसके अंतर्गत सभी महिलाएं जिनके साथ किसी भी तरह की घरेलू हिंसा की जाती है या उनको प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो विवाहित है या अविवाहित है। अब प्रश्न उठता है तब कैसे घर में घरेलू हिंसा का शिकार हो गई होती। मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं, बहुत सी बच्चियां जो पढ़ना चाहती हैं लेकिन माँ बाप जल्दी से उनकी शादी करके मुक्त होना चाहते हैं। माँ बच्चियां बहुत सारे चीजों से प्रभावित हो जाती है, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, और कोई सहायता करने वाला भी नहीं होता, क्योंकि ये आंतरिक मामला मान के, और लड़की है तो माँ बाप की इच्छा का पालन करना है, पढ़ाई नहीं करनी है, माँ बाप कहते हैं घर पे बैठो तो घर पे बैठे रहना है। तो ये इसमें अविवाहित महिलाओं को भी, बच्चियों को भी ये संरक्षण प्रदान किया गया, पढ़ाई में रोक लगती है, या कई मामलों में सौतेली माँ है वो किसी तरह का प्रताड़ना दे रही है, या घर का किसी कोई सदस्य। एक मामले में घर में ही मेरा भाई रहता था और वो उसकी कुदृष्टि लगी हुई थी बच्ची पर। बच्ची अपनी माँ से कहती तो माँ मारती पीटती कि तुम्हारी ही गलती होगी, तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से हिंसा का शिकार हो रही थी। और ये भी तो घरेलू हिंसा नहीं है ना, नहीं तो घरेलू का मतलब क्या हो गया, अपने ही लोग तो हिंसा का शिकार बना रहे हैं। ये हमारी सामाजिक विडंबना है कि घर में अगर कोई महिला प्रताड़ित हो रही है या किसी बच्ची की दुर्दशा हो रही है तो हम लोग निकलते हैं, ये घर के अंदर की बात है। और ये घर के अंदर की बात है, यही सोच बहुत सारे लोगों को हिंसा का शिकार बना रही है और बढ़ावा भी एक तरह से दे रही है कि बाहर वाले क्या कर लेंगे, हमारा आंतरिक मामला है। अब लड़की अपने घर है, कहीं प्रताड़ना का शिकार हो रही है, चलो शादी ब्याह की बात करें। शादी ब्याह के बाद एक प्रमुख फैक्टर आ जाता है कि दहेज के लिए प्रताड़ित करना। दहेज के तो पूरी तरह से आज हम 21वीं सदी के अंत तक भी अगर पहुंच जाए और हमारे मानसिक सोच में कहीं बदलाव ना आए तो कोई फायदा नहीं इस विकास का, क्योंकि हर जगह हम देखते हैं, और मुझे हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि जब लड़की विदाई होके आती है तो खासकर के महिलाएं दुल्हन देखने से ज्यादा दुल्हन कितने सामान लाई है इस पे अपना ध्यान केंद्रित करती हैं।
1: हाँ, ये तो आपने एकदम सही बोला, बहू कितने सामान लेके आई है, कितने गहने लेके आई है, इस पे लोगों का ध्यान केंद्रित रहता है।
2: हाँ, और यहीं पे बात खत्म नहीं होती सुनी जी, कानाफूसी जब शुरू होने लगता है कि अरे अमुक पड़ोसी की पड़ोसन की दुल्हन तो एसी भी लेके आई या इससे दुगना सामान लेके आई, तो उस लड़की के बारे में आप सोचिए जो नए परिवेश में आई हो और ऐसे लोगों से उसका साक्षात्कार हो रहा हो, तो वो तो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से टूट गए। किसान है तो इतना सब खर्च करके उसको भेजा यहाँ पे, और वो अपने मन से अपने ससुराल को अपना मानकर, पति को अपना मानकर पहला कदम रखते ही इस तरह की बातें सुनने पड़ गए। लेकिन उसके लिए भी इन्हीं सबके मद्देनजर भारतीय दंड संहिता 498 के अंतर्गत दहेज उत्पीड़न से संबंधित और उसके विरुद्ध कार्रवाई से संबंधित उपबंधों का प्राविधान किया गया है, जितना शादीशुदा महिला को अगर दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो अपनी शिकायत करा सकती। विवाह के बाद तो इस तरह की बातें स्वाभाविक सी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विवाह होने के पूर्व भी इस तरह की बातें शुरू हो जाती है, और कई मामलों में देखा जाता है कि शादियां सिर्फ इसलिए टूट जाती है कि लड़के वालों के डिमांड पूरी नहीं हुई। अभी मैंने 3-4 दिन पहले अखबार में एक इस तरह की सूचना पढ़ी कि लड़के वालों ने बारात आने के कुछ घंटे पहले फोन पर ये सूचित कर दिया कि बारात नहीं आएगी, और कारण सिर्फ ये था कि कुछ वस्तुएं थी, कुछ चीजें थी जिनकी आपूर्ति लड़की वाले नहीं कर पाए। तो लड़की शादी तय होने से लेकर के विवाहोपरांत जब तक लड़की सकुशल अपने घर के बारे में अपने परिवार वालों को नहीं बता देती कि हाँ हम ससुराल में सुखी हैं, इस तरह की कोई बात नहीं, तो एक तरह से दांव पे लगी रहती है हमारी मानसिक स्थिति, हमारी शारीरिक आर्थिक सब कुछ दांव पे लगा रहता है कि इतना देने के बाद लड़की संतुष्ट हो अपने परिवार में, और लड़की से ज्यादा लड़की के घर वाले संतुष्ट हो, बार बार यही आकांक्षाएं दिमाग में तैरती रहे। लेकिन सबसे दुख की बात होने की ये तो विवाह के बाद, विवाह तक लड़की पहुंची तब ये प्रताड़नाएं आ रही हैं। उस प्रताड़ना का क्या जो पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाती है। मैं बात कर रही हूँ भ्रूण हत्या, और भ्रूण हत्या के लिए TNDT एक्ट बनाया गया जिसे प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक कहा जाता है, या अगर हम इसको साधारण तौर पर समझे तो गर्भ का चिकित्सीय समापन आदि।
1: और ये सारी चीजें जो भी ये डर है और ये सारी चीजें जो है वो दहेज एक उसका बहुत बड़ा रीजन है। पर अभी आप बता रही थी कि और लड़कियों को जो दहेज के लिए प्रताड़नाएं दी जाती हैं, मानसिक हिंसा उनके साथ जो की जाती है, तो अगर ऐसी कोई हिंसा हो रही हो किसी महिला के साथ, मानसिक रूप से अगर कोई हिंसा हो रही हो, तो वो किस तरह से कानून की सहायता ले सकती हैं?
2: हर महिलाओं को अपने कानूनी अधिकार के बारे में पता होना चाहिए, सही जगह स्थान का पता होना चाहिए जहाँ वो जाए और इस पीड़ा के निदान के लिए उपचार प्राप्त कर सके। तो मानसिक प्रताड़ना हो या शारीरिक प्रताड़ना हो, उसके लिए जिस तरह की प्रताड़ना दहेज से संबंधित है या डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड विभाग भी बनाए गए हैं। अगर सहायता लेना है तो जिला प्रोबेशन अधिकारी के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं या डायरेक्ट न्यायालय से भी संपर्क कर सकते हैं। और बहुत सी महिलाएं इस बात से बचती हैं कि हम अधिवक्ता नहीं कर पाएंगे, मेरा सामर्थ्य नहीं है, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि आवश्यकता नहीं है। अगर महिला चाहे तो स्वयं ये प्रार्थना पत्र दे सकती है बगैर किसी अधिवक्ता के, या वो जिला प्रोबेशन अधिकारी के माध्यम से दिलवा सकती है, या प्रोबेशन अधिकारी के यहाँ बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं जो इस तरह के मैटर को देखते हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में दे सकती है और जो भी उपचार आवश्यक है उन्हें वहाँ से वो प्राप्त कर सकते।
1: मैम आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

संगीता त्रिपाठी जी ने हमें काफी अच्छी और कारगर जानकारियां दी। आशा है जो भी महिलाएं हमारे इस प्रोग्राम को सुन रही होंगी वो अपने कानूनी अधिकारों को अच्छे से समझ पाई होंगी और जरूरत पड़ने पर उसका प्रयोग भी कर सकेंगी और अपने साथ हो रही हिंसा को कहेंगी नो।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला लाउड स्पीकर 90 FM का। ये विशेष कार्यक्रम हिंसा को नो के अंतर्गत आप सुन रहे हैं और ऐसे ही विशेष कार्यक्रम आप समय दर समय यहाँ से सुनते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120-4060-205 पर, और इसी नंबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं कि ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा। एक बार पुनः लाउड स्पीकर 90 FM का हम धन्यवाद करते हुए आपसे मैं अब अनुमति लेना चाहता हूं। बस सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: ताजा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
2: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
1: क्या है राज?
2: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ, दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
3: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं, और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं, जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं, जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा, और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं, और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव, यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड्स सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है, जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहाँ खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
0: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियाँ खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नवजात शिशु, लड़की हो या लड़का, उसकी एक समान देखभाल करें।
2: नवजात लड़की या लड़के में खतरे के लक्षण दिखते ही उसे बिना समय गवाए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या SNCU में ले जाएं।
1: एक वर्ष तक के सभी नवजात शिशु को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या हो तो सरकारी अस्पताल में उपचार, दवाएं, सभी जांचें तथा जरूरत पड़ने पर रक्त, ये सभी सेवाएं निःशुल्क दी जाती हैं।
2: और 102 एम्बुलेंस सेवा घर से अस्पताल और अस्पताल से वापस घर तक निःशुल्क पहुंचाएगी।
1: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएगी खुशियां बेमिसाल।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
1: शिशु की सही देखभाल से
2: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुण शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि ये पांच जूस। वो कौन कौन से पांच जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए पांच हेल्दी जूस जरूर पिएं। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 FM।
1: मैंने

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कौशल बोध। यह पुस्तक व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि पुस्तिका पर आधारित है।
3: पृष्ठ संख्या 34, परियोजना 2, जैव विविधता विवरणिका। ये परियोजना आपको आसपास के परिवेश में सजीव वस्तुओं के बीच जैव विविधता के बारे में जानने में सहायता करेगी। चित्र 2.1। आप अपने अवलोकनों और एकत्र की गई जानकारी के आधार पर एक जैव विविधता विवरणिका बनाएंगे। परियोजना कार्य करने के पश्चात आप कार्य करने में सक्षम होंगे। जैव विविधता विवरणिका के बारे में जानने में, जैव विविधता को अंकित करने के लिए स्थानों की पहचान करने में, जैव विविधता पर एक प्रस्तुतीकरण तैयार करने में, उन स्थानों की पहचान

करने में जहां जैव विविधता को अंकित किया जा सके, जानकारी एकत्रित करने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करने में। चित्र 2.1, अपने आसपास सजीव वस्तुओं की विविधता को समझिए। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें छात्र छात्राएं अपने आसपास सजीव वस्तुओं की विविधता को समझ रहे हैं। पृष्ठ संख्या 35। जैव विविधता, जो सजीव वस्तुओं की विविधता को दर्शाती है, इसमें पृथ्वी पर जीव के रूप समाहित हैं। इसमें पौधे, जानवर, पक्षी, मछली, कीड़े और यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव भी सम्मिलित हैं, जो मिट्टी सहित हर जगह पाए जाते हैं। चित्र 2.1 को समझिए। आपने विज्ञान में हमारे चारों ओर विद्यमान सजीव वस्तुओं की विविधता के विषय में अध्ययन किया होगा। किसी क्षेत्र में सजीव वस्तुओं की विविधता का दस्तावेजीकरण करने के लिए जैव विविधता विवरणिका का उपयोग किया जाता है। विवरणिका में निवास स्थान के विषय में जानकारी सम्मिलित होती है। इसके साथ ही इसमें आसपास का परिवेश, मिट्टी के प्रकार, सजीव वस्तुओं के वैज्ञानिक और स्थानीय नाम, जानवरों का भोजन, सजीव वस्तुएं जो दूसरों को हानि पहुंचा सकती हैं और अन्य विभिन्न प्रकार की जानकारियां भी सम्मिलित होती हैं। जैव विविधता का दस्तावेजीकरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। निर्माण या कृषि के लिए भूमि की सफाई या जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों के कारण जीवों के आवासों में परिवर्तन होता है, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त होने लगती हैं। इस परस्पर जुड़ाव या निर्भरता से तात्पर्य है कि किसी भी पौधे या प्रजाति की हानि पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है, जिसमें मानव भी सम्मिलित है। जैव विविधता विवरणिका लोगों को उपयोगी जानकारी भी प्रदान करती है, जैसे फसलों और जानवरों से संबंधित स्थानीय ज्ञान, औषधीय गुण वाले पौधे, पौधों को प्रभावित करने वाले कीड़े, फसल बोने का सही समय इत्यादि। आप अपने आसपास की जैव विविधता को व्यवस्थित ढंग से सूचीबद्ध कर अपनी लघु जैव विविधता विवरणिका बना सकते हैं। यदि आपको कोई ऐसा पौधा, कीट, पक्षी या जानवर मिलता है जिसे आप नहीं पहचानते, तो आप निम्नलिखित से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 1. शिक्षकों या बुजुर्गों या परिवार के सदस्यों या विशेषज्ञों से बात करके। 2. पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़कर। 3. कंप्यूटर पर इंटरनेट की सहायता से। 4. मोबाइल फोन पर एप्लीकेशन का उपयोग करके। जैव विविधता विवरणिका में प्रयुक्त शब्द, वैज्ञानिक नाम, सजीव वस्तुओं को दिया गया एक नाम जो सभी भाषाओं में समान होता है। विभिन्न भाषाओं में इनके नाम अलग अलग होते हैं। एक वैज्ञानिक नाम ये सुनिश्चित करता है कि लोग, विशेषकर वैज्ञानिक, जानते हैं कि वे एक ही सजीव वस्तु का उल्लेख कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 36। विविधता, इससे तात्पर्य एक ही प्रकार के पौधों में भिन्नता से है। उदाहरण के तौर पर आम की विभिन्न किस्में हैं, जैसे अल्फांसो, केसर, रत्नागिरी, तोतापरी, चौंसा, दशहरी, लंगड़ा, बंगनपल्ली, अनवर रतोल और पैरी। फसल का मौसम, प्रत्येक फसल के लिए विशेष मौसम होता है जिसमें वो फसल उगाई जाती है। फल आने का मौसम, ये उस मौसम को संदर्भित करता है जब पेड़ पर फल लगने लगते हैं। बीज या पौधों का स्रोत, इसका तात्पर्य ये है कि नए पौधे कहाँ से लाए जाते हैं, जैसे बीज, अंकुर, कंद, तनों के भाग से या किसी अन्य विधि से। प्रभावित फसल, जो फसल कीटों, रोगों, पत्तियों या फलों को खाने वाले कीटों या किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त हुई हों। परपोषी, ये ऐसे पौधे या जानवर होते हैं जो अपने भोजन के लिए अन्य पौधों या जानवरों पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए कुत्ते, पिस्सू, कीड़ों का घर होते हैं जो उनका खून चूसते हैं, और कुछ पौधे कैटरपिलर को आश्रय प्रदान करते हैं जो उनकी पत्तियों और फलों को खाकर बढ़ते हैं।
कीट। ये वे कीट पक्षी या जानवर हैं जो पौधों के लिए हानिकारक हैं। कीटनाशक। कीटनाशकों का उपयोग कीटों द्वारा परपोषी को होने वाली हानि को रोकने या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये तरल, ठोस या गैस के रूप में हो सकते हैं। खरपतवार नाशक। खरपतवार नाशकों का उपयोग खरपतवारों द्वारा पौधों को होने वाली हानि को रोकने या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। GI टैग। भौगोलिक संकेत GI टैग सरकार द्वारा दिया जाता है जो वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है। पौधों के विषय में इसका अर्थ है कि पौधे एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उगाए जाते हैं और उस क्षेत्र की सभी उपज उच्च मानक स्तर की होती है। उदाहरण के लिए, हमारे देश में चावल की कई किस्में हैं, जैसे केरल का नवारा चावल, उत्तराखंड का बासमती और पश्चिम बंगाल का गोविंद भोग चावल GI टैग वाले हैं। अन्य उदाहरण महाराष्ट्र के जलगांव के केले का है। मैं क्या कर पाऊंगा, मैं क्या कर पाऊंगी। परियोजना कार्य करने के पश्चात आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे। एक, अपने आसपास देखी गई जैव विविधता का व्यवस्थित रूप विवरण तैयार कर सकेंगे। दो, जैव विविधता से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकेंगे। तीन, अपने आसपास की जैव विविधता के बारे में अपनी समझ को प्रस्तुत करने के लिए जानकारी का विश्लेषण कर सकेंगे। पृष्ठ संख्या 37। मुझे किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी? इस परियोजना को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होगी। एक नोटबुक, कलम, पेंसिल, शार्पनर, रबर और मापने का पैमाना जैसे कि मीटर स्केल। पौधों या कीटों का विस्तृत विवरण देखने के लिए हाथ से प्रयोग होने वाले आवर्धक कांच या लेंस का उपयोग कर सकते हैं। कैमरा या स्मार्टफोन जो अपने शिक्षक या माता पिता अभिभावकों से लिया गया हो, का उपयोग फोटोग्राफ लेने या वीडियो और ऑडियो की रिकॉर्डिंग करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि आपको अपनी जैव विविधता विवरणिका में जो कुछ भी सम्मिलित करना है उसका रेखा चित्र अवश्य बनाना चाहिए। सजीव वस्तुओं की पहचान के लिए आप एक स्मार्टफोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं स्वयं और दूसरों को कैसे सुरक्षित रखूं? आपको निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। क्षेत्र भ्रमण के लिए जूते पहनिए। मच्छरों के काटने से बचने के लिए अपने हाथ और पैर ढक कर रखिए। जंगली पौधों, कीड़ों, पक्षियों और जानवरों को देखते समय सावधान रहिए। किसी भी जानवर, पक्षी या कीड़ों को परेशान मत कीजिए। किसी भी पौधे को नुकसान न पहुंचाएं। कोई भी कूड़ा कचरा पीछे न छोड़िए। ये सजीव वस्तुओं के लिए हानिकारक है। इंटरनेट सुरक्षा। इंटरनेट का उपयोग करते समय अपने शिक्षक की सहायता अवश्य लीजिए। सावधान रहिए और सुरक्षा की जांच किए बिना कुछ भी अपलोड या डाउनलोड न कीजिए। इसके साथ सबसे अनिवार्य है कि व्यक्तिगत जानकारी कहीं भी साझा न कीजिए। पृष्ठ संख्या 38। आरंभ करने से पहले मुझे क्या जानने की आवश्यकता है? गतिविधि 1। हमारे आसपास क्या है? अपने आसपास देखिए और उन सजीव वस्तुओं का निरीक्षण कीजिए जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं। आप पाएंगे कि प्रत्येक कीटों, मकड़ियों, गिलहरियों, पक्षियों और अन्य प्राणियों से भरा एक छोटा सा जीव जगत है जो पौधों को अपना भोजन बनाते हैं और इनकी पत्तियों और शाखाओं के बीच आश्रय लेते हैं। चित्र 2.2। आप इस तरह के अपने कुछ अवलोकनों और संबंधित सूचनाओं को अपने जैव विविधता विवरणिका में लिखिए। चित्र 2.2। हमारे आसपास सजीव वस्तुओं के अवलोकनों को लिखना। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ छात्र छात्राएं अपने आसपास की सजीव वस्तुओं के अवलोकनों को लिख रहे हैं।
जैव विविधता विवरणिका पर लिखना शुरू करने से पहले तालिका 2.1 को पूरा कीजिए। इससे आपको उन जीवित जीवों को याद रखने में सहायता मिलेगी जिन्हें आप सामान्यतः देखते हैं। आप उन्हें कहाँ देखते हैं? उदाहरण के लिए किसी जलाशय के पास, किसी खेत में या किसी पार्क में। आप चाहें तो एक स्केच बना सकते हैं या एक चित्र चिपका भी सकते हैं। ये जानकारी तब उपयोगी होगी जब आप अपने जैव विविधता विवरणिका को अंकित करने के लिए सर्वेक्षण की योजना बनाएंगे। तालिका 2.1 उन स्थानों की पहचान करना जहां आप विभिन्न प्रकार की सजीव वस्तुओं का अध्ययन कर सकते हैं। यहां एक तालिका दी गई है जिसमें 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम में है सजीव वस्तुएं या जीवित प्राणी, कीटों, पक्षियों, जानवरों, कृमि। दूसरे कॉलम में है नाम। जितना संभव हो उतनी भाषाओं में नाम खोजने का प्रयास कीजिए। तीसरे कॉलम में है स्थान। आप उन्हें कहाँ पाते हैं? पृष्ठ संख्या 39। गतिविधि 2। किसी विशेषज्ञ से संपर्क कीजिए। आप अलग अलग विशेषज्ञों को जैव विविधता के बारे में बात करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, जैसे वन अधिकारी या किसान। एक संरक्षणवादी जो पौधों और जानवरों की सुरक्षा के लिए काम करता है को भी जैव विविधता के विषय में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। एक और व्यक्ति जिसे आप आमंत्रित कर सकते हैं वो है आयुर्वेदिक चिकित्सा का विशेषज्ञ, जैसे एक वैद्य या आयुर्वेदाचार्य। ये व्यक्ति पारंपरिक आदिवासी चिकित्सा में पारंगत होता है क्योंकि वे औषधीय जड़ी बूटियों और अन्य संबंधित पौधों का उपयोग करते हैं। आपको विशेषज्ञों से पूछने के लिए प्रश्न पहले से ही तैयार करने चाहिए। वैद्य या आयुर्वेदाचार्य से प्रश्न पूछने के कुछ उदाहरण हैं। 1, हमें अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधे कहाँ मिल सकते हैं? 2, हमें ये कैसे पता चलेगा कि उस क्षेत्र में उगने वाले पौधे लंबे समय से वहीं हैं, स्थानीय, या उन्हें अन्य स्थानों से लाया गया है? 3, क्या ऐसे कोई पौधे हैं जो अब इस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं? 4, जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए हमें किस प्रकार के पौधे अधिक उगाने चाहिए? 5, क्या कोई ऐसा पौधा है जिसे हमें नहीं उगाना चाहिए क्योंकि ये जैव विविधता को हानि पहुंचाता है? 6, हम अपनी जैव विविधता विवरणिका तैयार करना शुरू कर रहे हैं। इस संदर्भ में क्या आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है? मुझे क्या करना है? अब आप अपनी जैव विविधता विवरणिका बनाने के लिए तैयार हैं। आपको प्रारंभिक चरण में उन स्थानों की पहचान करनी है जहां आपको जाना है। आपको उन स्थानों पर एक से अधिक बार जाना होगा। इसके साथ ही आपको अपनी यात्राओं के लिए एक योजना भी बनानी होगी। इस योजना के आधार पर आपको जैव विविधता विवरणिका में आंकड़ों या तथ्यों को अंकित करना होगा। इसके पश्चात अपने अवलोकनों के आधार पर एक प्रस्तुति बनानी होगी। गतिविधि 3, सर्वेक्षण के लिए स्थानों की पहचान कीजिए। आप ये तय करें कि जैव विविधता का विवरण तैयार करने के लिए किन स्थानों पर जाएंगे। उदाहरण के लिए, विद्यालय के आसपास का क्षेत्र, जल निकायों के आसपास, अपने घर के पास, खेतों या पार्कों या बगीचों या नर्सरी के आसपास, किसी धार्मिक स्थान के पास और बाजार के निकट। चित्र 2.3, पृष्ठ संख्या 40। इस पृष्ठ पर 4 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में तालाब है, दूसरे चित्र में वन है, तीसरे चित्र में खेत है, चौथे चित्र में उद्यान है। चित्र 2.3 का तालाब, चित्र 2.3 ख वन, चित्र 2.3 ग खेत, चित्र 2.3 घ
उद्यान

शहरी क्षेत्र, खाली स्थान। दो, क्या आपने कोई ऐसा क्षेत्र देखा है जहां अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक पौधे उगते हैं, हाँ या नहीं, खाली स्थान। तीन, आपने अपने आसपास किस प्रकार के जीव, पक्षी, स्तनधारी, कीड़े आदि देखे हैं, खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 41। चार, क्या कुछ क्षेत्रों में पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए कोई विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, उदाहरण के लिए कुछ प्रजातियों का संरक्षण या क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति प्राप्त करना जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, खाली स्थान। पांच, अब आप किन स्थानों पर जाने की योजना बना रहे हैं, इस पृष्ठ पर लिखिए। एक, खाली स्थान। दो, खाली स्थान। तीन, खाली स्थान। चार, खाली स्थान। पांच, खाली स्थान। गतिविधि चार, जैव विविधता अवलोकन के लिए भ्रमण का समय निर्धारित करना। बिंदु एक, स्थानीय विशेषज्ञों, जीव विज्ञानियों, संरक्षणवादियों और अन्य लोगों से इस विषय में सलाह लीजिए। बिंदु दो, अपने आप को समूहों में विभाजित कीजिए, प्रत्येक समूह में अधिकतम 5 विद्यार्थी हों। बिंदु तीन, शैक्षणिक वर्ष के अलग अलग समय पर पहचाने गए क्षेत्रों का भ्रमण करने की योजना बनाइए ताकि आप देख सकें कि विभिन्न मौसम परिदृश्यों के दौरान कोई परिवर्तन होता है या नहीं। भ्रमण पर जाने के लिए एक समय सारणी बनाइए और इसे नीचे दी गई तालिका 2.2 में अंकित कीजिए। तालिका 2.2, जैव विविधता विवरणिका के लिए भ्रमण पर जाने की समय सारणी। एक, खाली स्थान। दो, खाली स्थान। तीन, खाली स्थान। चार, खाली स्थान। पांच, खाली स्थान। छह, खाली स्थान। बिंदु एक, आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों जैसे दूरबीन, आवर्धक कांच, कैमरे, क्षेत्र पथ प्रदर्शक, फील्ड गाइड, नोटबुक आदि भी साथ ले जाइए। पौधों, कीटों, पक्षियों और अन्य सजीव वस्तुओं का अवलोकन कीजिए। बिंदु दो, पहचाने गए स्थानों पर जाएं और उनका अन्वेषण कीजिए। पृष्ठ संख्या 42। गतिविधि 5, जैव विविधता विवरणिका को भरना। जिन स्थानों पर आप गए हैं उसके आधार पर अपने अवलोकनों और चर्चाओं पर अपनी प्रतिक्रियाएं तालिका 2.3 से 2.7 में अंकित कीजिए। जैव विविधता विवरणिका में कई पंक्तियां और स्तंभ कॉलम होते हैं। तालिका 2.3 से 2.7 का अध्ययन कीजिए, यथासंभव अधिक से अधिक अंकित करने का प्रयास कीजिए। आप अपने शिक्षक और साथियों के साथ चर्चा में अन्य प्रकार की जानकारी से संबंधित अधिक पंक्तियां भी जोड़ सकते हैं। आप अपने आसपास रहने वाली सजीव वस्तुओं से संबंधित नई तालिकाएं भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बड़े शहर में रहते हैं तो कॉलोनी के बगीचे में फूलों और फलों के पेड़ों की खोज कीजिए। चित्र 2.4 और 2.5। चित्र 2.4, आंखों एवं आवर्धक लेंस से अवलोकन करना। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें दो छात्राएं आंखों एवं आवर्धक लेंस से जैव विविधता का अवलोकन कर रही हैं। अपने अवलोकनों को लिखते समय आपको ये करना चाहिए। एक, अपने अवलोकनों को एक दूसरे के साथ साझा करें, क्योंकि ये भी संभव है कि जब आप पहली बार किसी स्थान पर गए हों तो आप कुछ भूल गए हों लेकिन आपके मित्र के साथ ऐसा नहीं हुआ हो। ऐसी स्थिति में आप हमेशा जांच करने के लिए वापस भी जा सकते हैं। दो, प्रत्येक बार जब आप किसी स्थान पर जाएं तो अन्य नई जानकारी को अवश्य लिखिए। यहाँ एक और चित्र दिया गया है जिसमें दो छात्र अवलोकनों को अभिलेखबद्ध कर रहे हैं। चित्र 2.5, अवलोकनों को अभिलेखबद्ध करना। तीन, उन कीटों, कृमि, पक्षियों, पौधों और जानवरों आदि

जो भी आपके लिए नए हों या उनके विषय में नहीं जानते हों के रेखा चित्र बनाने या उनके चित्र लेने की कोशिश कीजिए। इससे आपको बाद में उन्हें दूसरों के सामने प्रस्तुत करने या पहचान के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI टूल का उपयोग करके पहचानने में सहायता प्राप्त होगी। पृष्ठ संख्या 43। यदि आपको अभी भी लगता है कि आपको तालिका के किसी विशिष्ट भाग के लिए कोई जानकारी नहीं मिल रही है, तो उसे रिक्त छोड़ने का निर्णय लेने से पहले अपने शिक्षक से बात कीजिए। अब आप जैव विविधता विवरणिका बनाने के लिए तैयार हैं। 1. खेत के पौधों में जैव विविधता का अवलोकन। 1. अवलोकन की तिथि। 2. स्थान। 3. आवास प्रकार। 4. मौसम की स्थिति। 5. टिप्पणियां। तालिका 2.3 फसल पौधों का विवरण। क्रम संख्या विवरण 1 उदाहरण 2, 3, 4, 5 1 फसल का नाम प्याज। 2 स्थानीय नाम मराठी में कांदा, तमिल में वेंग्यम, हिंदी में प्याज। 3 वैज्ञानिक नाम एलियम सेपा। 4 किस्म का नाम पचगंगा। 5 रोपण विधि प्रत्यक्ष बीजारोपण या कंद या रोपण। 6 विशिष्ट गुण जैसे फसल और कटाई का मौसम, प्याज को अलग अलग मौसम में लगाया और काटा जा सकता है। 7 उपयोग कच्चा या पकाने के बाद खाया जाता है। 8 स्केच या छायाचित्र रिक्त स्थान। 2 फलदार पौधों में जैव विविधता का अवलोकन। 1 अवलोकन की तिथि। 2 स्थान। 3 आवास प्रकार। 4 मौसम की स्थिति। 5 टिप्पणियां। पृष्ठ संख्या 44 तालिका 2.4 फलदार पौधों का विवरण। क्रम संख्या विवरण 1 उदाहरण 2, 3, 4, 5 1 पौधे का नाम आम। 2 स्थानीय नाम आम अंबा। 3 इस तालिका में आम के बारे में विवरण दिया गया है। आप इसी प्रकार अन्य फलदार पौधों का विवरण लिख सकते हैं। 2 स्थानीय नाम आम अंबा। 3 वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। 4 किस्म का नाम अल्फांसो। 5 रोपण विधि ग्राफ्टिंग या बीजारोपण। 6 विशिष्ट गुण जैसे फल आने का मौसम और सुगंध, फल आने का मौसम गर्मी, विशिष्ट तीव्र और सुखद सुगंध। 7 उपयोग कच्चा या फलों का गूदा या जूस बनाकर उपयोग किया जाता है। 8 स्केच या छायाचित्र, यहां आप इसका स्केच या छायाचित्र बना सकते हैं या लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए, अल्फांसो आम को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है, जो महाराष्ट्र के विशिष्ट क्षेत्रों विशेषकर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग से उनकी उत्पत्ति को प्रमाणित करता है। 3 पशुओं के चारे फॉडर के पौधों की जैव विविधता का अवलोकन। 1 अवलोकन की तिथि। 2 स्थान। 3 आवास प्रकार। 4 मौसम की स्थिति। 5 टिप्पणियां। तालिका 2.5 चारा फॉडर पौधों का विवरण। क्रम संख्या विवरण 1 उदाहरण 2, 3, 4, 5 इस तालिका में उदाहरण के रूप में नेपियर घास या हाथी घास का विवरण दिया गया है। आप इसी प्रकार से अन्य चारा पौधों का विवरण लिखिए। 1 पौधे का नाम नेपियर घास हाथी घास। 2 स्थानीय नाम हट्टी गोवत मराठी में। 3 वैज्ञानिक नाम पेनिसेटम परपुरियम। 4 किस्म का नाम पूसा जॉयंट। 5 रोपण विधि तने की कटाई या भागों में बांटना। 6 विशिष्ट गुण जैसे बुवाई का समय,
बुवाई का समय फरवरी से मार्च। पृष्ठ संख्या 45। 7. उपयोग पशुओं के चारे के रूप में तथा वन्य जीवों के आवास और आश्रय हेतु उपयोग किया जाता है। 8. स्केच या फोटोग्राफ, यहां आप स्केच या फोटोग्राफ लगा सकते हैं। 4. खरपतवार पौधों में जैव विविधता का अवलोकन। 1. अवलोकन की तिथि। 2. स्थान। 3. आवास प्रकार। 4. मौसम की स्थिति। 5. टिप्पणियां। तालिका 2.6. खरपतवार पौधों का विवरण। इस तालिका में बरमूडा घास का उदाहरण के तौर पर विवरण दिया गया है। आप खाली स्थान में अन्य खरपतवार पौधों का विवरण लिखिए। 1. पौधे का नाम बरमूडा घास। 2. स्थानीय नाम हरल मराठी में। 3. वैज्ञानिक नाम सिनोडोन डेक्टिलॉन। 4. किस्म का नाम पूसा जायंट। 5. रोपण विधि, उदाहरण गन्ना, कपास, घास के मैदान और फलदार वृक्षों के बाग। 6. विशिष्ट गुण जैसे बुवाई का समय, ये गर्मी और सूखे के प्रति अत्यधिक सहनशील है। ये विभिन्न कीटों और वन्य जीव प्रजातियों के लिए आवास और भोजन प्रदान करता है। 7. उपयोग खेल के मैदानों, खेल के क्षेत्र और व्यस्त यातायात वाले क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। 8. स्केच या छायाचित्र, यहां आप इसका स्केच बना सकते हैं या छायाचित्र लगा सकते हैं। पृष्ठ संख्या 46. 5. कीटों में जैव विविधता का अवलोकन। अवलोकन की तिथि। स्थान 1. अवलोकन की तिथि 2. स्थान 3. आवास प्रकार 4. मौसम की स्थिति 5. टिप्पणियां। तालिका 2.7. कीटों का विवरण। क्रम संख्या विवरण 1. उदाहरण 2. 3. 2.7. कीटों का विवरण। क्रम संख्या विवरण 1. उदाहरण 2. 3. 4. 5. इस तालिका में उदाहरण के रूप में आलू का विवरण दिया गया है। खाली स्थान में आप अन्य का विवरण लिखिए। 1. पौधे का नाम आलू। 2. स्थानीय नाम आलू हिंदी में। 3. वैज्ञानिक नाम सोलनम ट्यूबरोसम। 4. कीट का नाम एफिड कीट। 5. कीट का वैज्ञानिक नाम माइजस पर्सिका ग्रीन पीच एफिड एफिस गॉसिपी कॉटन एफिड। 6. आवास, एफिड्स आमतौर पर पत्तियों के निचले हिस्सों साथ ही पौधों की कोमल शाखाओं और कलियों पर पाए जाते हैं। 7. विशिष्ट गुण यदि है, पंख वाले और पंखहीन दोनों रूपों में पाया जा सकता है। 8. आक्रमण का समय या मौसम, सर्दियों के पश्चात जब तापमान में वृद्धि शुरू होती है। 9. स्केच या छायाचित्र, यहां आप इसका स्केच बना सकते हैं या छायाचित्र लगा सकते हैं। पृष्ठ संख्या 47। क्या आप जानते हैं, आप अपने आसपास किसी एक पेड़ को पंजीकृत कर सकते हैं और प्रत्येक सप्ताह चित्र अपलोड करने के लिए सीजन वॉच की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप अन्य क्षेत्रों में भी पेड़ों को ढूंढ सकते हैं। क्या आपको सीजन वॉच में अपने आसपास के परिवेश में लगे हुए पेड़ों जैसा कोई पेड़ दिखाई देता है? क्या आपको उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी मिली? गतिविधि 6. अज्ञात की पहचान करना। यदि आपसे कोई जानकारी छूट गई है या आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी है तो आपको 2.3 से 2.7 तक की तालिकाओं में उसे अंकित करना होगा। इस संदर्भ में आप समुदाय के किसी विशेषज्ञ या जानकार व्यक्ति से पूछ सकते हैं और इसके साथ आप AI टूल या विद्यालय पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चित्र 2.6। आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना के अनेक स्रोतों का उपयोग कीजिए। यहाँ एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए
सूचना के अनेक स्रोत

पौधों का उपयोग किया जा रहा है। पौधों या फसलों या खरपतवारों या कीटों के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने के लिए AI टूल का उपयोग करना। गूगल लेंस एक छवि पहचान इमेज रिकॉग्निशन तकनीक है जो मशीन लर्निंग और गूगल लेंस ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR का उपयोग करती है। इसके द्वारा आप उपकरण मोबाइल फोन टैब आदि के कैमरे से ली गई वस्तुओं पाठ्य सामग्री स्थलों की फोटो या चित्र के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ये वस्तुओं की पहचान कर सकता है, पाठ्य सामग्री पढ़ सकता है, भाषाओं का अनुवाद कर सकता है, बारकोड और क्विक रेस्पॉन्स QR कोड स्कैन कर सकता है और विभिन्न गूगल सेवाओं के साथ एकीकृत कर सकता है। आप गूगल लेंस को गूगल फोटो ऐप या एक स्वतंत्र ऐप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कैमरे को किसी वस्तु पर केंद्रित कर संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या अनुवाद जैसे कार्य कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 48। गूगल लेंस किसी भी चित्र का विश्लेषण कर जानकारी प्रदान करता है। आप गूगल लेंस का उपयोग कर फोटो के माध्यम से पौधों फसलों खरपतवारों कीटों एवं रोगों के वैज्ञानिक नाम और अन्य संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने पहले से फोटो नहीं ली हैं, तो आप गूगल लेंस का उपयोग करके फोटो ले सकते हैं। एक स्मार्टफोन पर गूगल लेंस ऐप डाउनलोड कीजिए और खोलिए। दो खोज स्थान सर्च बार में गूगल लेंस आइकन को ढूंढिए और उस पर क्लिक कीजिए। इससे गूगल लेंस सक्रिय हो जाएगा। तीन कैमरे को उस पौधे या कीट या छवि की ओर इंगित कीजिए जिसे आप पहचानना चाहते हैं और खोज करने के लिए शटर बटन पर क्लिक कीजिए। अब आप जैव विविधता विवरणिका में छूटी हुई जानकारी भी अंकित कर सकते हैं। गतिविधि 7 जैव विविधता विवरणिका का प्रस्तुतीकरण। आपके द्वारा भ्रमण किए गए प्रत्येक स्थान पर एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग करते हुए जैव विविधता पर एक प्रस्तुति बनाइए। आप चार्ट आरेख मॉडल या अन्य कुछ भी बना सकते हैं। याद रखिए प्रस्तुति केवल आपके अवलोकन और आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी पर आधारित होगी। इस बात पर प्रकाश डालिए कि स्थानों और सजीव वस्तुओं में कई भिन्नताएं हो सकती हैं। यही तो जैव विविधता है। आपका प्रस्तुतीकरण दो भागों में होगा। भाग एक आपके द्वारा एकत्रित जानकारी का सारांश तैयार कीजिए। अभी आपने जो जानकारी भिन्न भिन्न तालिकाओं में अंकित की है वो भिन्न भिन्न समय पर किए गए भ्रमणों पर आधारित है। कल्पना कीजिए कि आपको किसी आगंतुक को अपने आसपास की जैव विविधता के बारे में बताना है। सभी तालिकाओं से जानकारी को संयोजित कर उस आगंतुक के लिए सारांश बनाएं। कुछ मार्गदर्शक प्रश्न इस पृष्ठ पर दिए गए हैं। आप अन्य संभावित प्रश्नों और अपनी टिप्पणियों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के विभिन्न तरीकों पर विचार कीजिए। उत्तरों को स्पष्ट और सटीक बनाने के लिए आप उदाहरण भी जोड़ सकते हैं। एक आपके आसपास के क्षेत्रों में उगने वाले विभिन्न पौधे कौन से हैं। दो कौन से पौधे सभी मौसमों में उगते हैं और कौन से मौसमी हैं। पृष्ठ संख्या 49। तीन क्या सभी फसलों और फलों की उपज एक ही मौसम में काटी जा सकती हैं? चार क्या सभी पौधे एक ही मौसम में वृद्धि करते हैं? पांच क्या पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं? यदि हाँ तो कैसे? छह क्या एक ही प्रकार का चारा साल भर उपलब्ध रहता है? क्या वे केवल कुछ ही मौसम में ही उपलब्ध होते हैं? सात क्या सभी पौधे खरपतवार से प्रभावित होते हैं? आठ क्या कुछ खरपतवार उपयोगी हैं? कृपया कुछ खरपतवारों के नाम बताएं और उनके उपयोग का वर्णन कीजिए। नौ क्या सभी पौधे किसी न किसी प्रकार के कीटों से प्रभावित होते हैं? दस
क्या पौधे कुछ विशेष मौसमों में विशेष कीटों से अधिक प्रभावित होते हैं? 11. आपने समुदाय के लोगों से क्या जानकारी एकत्र की? उदाहरण के लिए, पौधों का औषधि के रूप में उपयोग, चारे के रूप में या पवित्र पौधे आदि। इस तरह आप आगंतुक को पूरी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। जैव विविधता विवरणिका, पेड़, कीड़े, चित्र 2.7। जैव विविधता विवरणिका पर प्रस्तुतिकरण। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है। इसमें छात्र छात्राएं अपने अध्यापक के सामने जैव विविधता विवरणिका का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 50। भाग 2। आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी से आगे बढ़िए। अब उन तरीकों के बारे में सोचिए जिनसे आप अपने आसपास की जैव विविधता के बारे में गहरी समझ के लिए एकत्रित की गई जानकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं। आपकी प्रस्तुति में कुछ आरेख और कुछ स्पष्टीकरण सम्मिलित होंगे। इसे तैयार करने के रोचक तरीकों के बारे में विचार कीजिए। चित्र 2.7। कुछ मार्गदर्शक प्रश्न नीचे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त और प्रश्नों पर भी विचार कीजिए। 1. क्या आपने एक स्थान पर अन्य की तुलना में अधिक सजीव वस्तुएं देखी? 2. आपने जिन स्थानों का भ्रमण किया वहां आपने कितने प्रकार के पौधे और कीट देखे? 3. क्या आपने एक से अधिक स्थानों पर एक ही प्रकार के कीड़े, कीट या कृमि देखे? 4. क्या आपने इस गतिविधि के लिए किसी AI टूल का उपयोग किया? यदि हाँ तो कौन से और कैसे? 5. क्या आपने जानकारी इकट्ठा करने के लिए किसी अन्य स्रोत का उपयोग किया? आप अपनी प्रस्तुति के माध्यम से जो निष्कर्ष या विचार साझा करना चाहते हैं उसे सम्मिलित कीजिए। मैंने दूसरों से क्या सीखा? विशेषज्ञों के साथ बातचीत। आपने विशेषज्ञों के साथ उन सभी उपायों पर चर्चा की है जो इस क्षेत्र में जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा उपाय प्रभावी होगा? रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 51। समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत। आपने ग्रामीण क्षेत्र में किसी किसान, शहर के किसी नर्सरी कर्मचारी, माली या ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के किसी समुदाय के सदस्य से बात की होगी। उस जानकारी के अनुसार पिछले 10 या 20 वर्षों में जैव विविधता में किस तरह से परिवर्तन आया है इस बारे में लिखिए। रिक्त स्थान। मैंने क्या कार्य किया और इसमें कितना समय लगा? ये समझना महत्वपूर्ण है कि किसी गतिविधि को पूरा करने में कितना समय लगता है। प्रत्येक गतिविधि पर आपने लगभग कितना समय व्यतीत किया, इसका अनुमान लगाइए। इसे नीचे दी गई समय रेखा पर अंकित कीजिए। यदि आपने पुस्तिका में दी गई गतिविधियों के अतिरिक्त गतिविधियां की हैं, तो उनकी संख्या और समय भी जोड़िए। ये संभव है कि आप अपनी समय सारणी के अनुसार एक ही स्थान पर एक से अधिक बार गए हों। यह भी संभव है कि जानकारी एकत्रित करने के लिए कई बार वापस गए हों। प्रत्येक गतिविधि पर बिताए गए कुल समय की संख्या की गणना कीजिए। यहाँ एक समय रेखा अंकित की गई है। इसमें 7 गतिविधियों के लिए स्थान दिया गया है और उनकी समयावधि लिखने के लिए भी स्थान दिया गया है। समयावधि, कालांश, गतिविधि। पृष्ठ संख्या 52। क्या आप जानते हैं भारत में कई जैव विविधता धरोहर स्थल BHS हैं जो अपनी अनूठी जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। इन स्थलों का उद्देश्य क्षेत्र की जैव विविधता की रक्षा करना और प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करने में उनकी महत्ता को पहचानना है। भारत में कुछ उल्लेखनीय जैव विविधता विरासत स्थल इस पृष्ठ पर लिखित हैं। बिंदु 1. कर्नाटक में नल्लूर इमली ग्रोव में इमली के पेड़ हैं जो 400 वर्ष से अधिक पुराने हैं। बिंदु 2. बिहार में गोगा बील पक्षी प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है जहां पक्षियों की 90 से अधिक प्रजातियां हैं जिनमें से कई मध्य एशिया जैसे सुदूर स्थानों से आती हैं। बिंदु 3.
पश्चिम बंगाल के टोंगलू में

0: ऐसे पौधे हैं जो आपको संसार में कहीं और नहीं मिलेंगे। बिंदु चार, हैदराबाद की अमीनपुर झील 200 से अधिक पक्षी प्रजातियों का घर है, भले ही ये एक व्यस्त शहर के बीच में है। बिंदु पांच, असम में माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इसमें सत्रास नामक मठ है। बिंदु छह, केरल में मिरिस्टिका स्वैम्प प्राचीन जायफल के पेड़ों का घर है, जो एक मसाला है जिसका उपयोग हम खाना पकाने में करते हैं। बिंदु सात, कर्नाटक में काली टाइगर रिजर्व बंगाल के बाघों और हाथियों जैसे अन्य बड़े जानवरों के लिए एक सुरक्षित स्वर्ग है। बिंदु आठ, पश्चिम बंगाल में चिल्कीगढ़ कनक दुर्गा सेक्रेड ग्रोव में पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले विशेष पौधे हैं। ये वन स्थानीय लोगों द्वारा संरक्षित है। बिंदु नौ, अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली में लोग अनोखे तरीके से चावल और मछली का एक साथ उत्पादन करते हैं। बिंदु दस, मेघालय में माओ फलांग सेक्रेड ग्रोव स्थानीय जनजातियों द्वारा संरक्षित हैं और दुर्लभ पौधों और औषधीय जड़ी बूटियों से भरा है। पृष्ठ संख्या 53, मैं और क्या कर सकता हूं, मैं और क्या कर सकती हूं। आप अपने घर और अन्य स्थानों पर जैव विविधता का अवलोकन जारी रख सकते हैं। अपनी टिप्पणियों का दस्तावेजीकरण कीजिए और एक प्रकृति पत्रिका, नेचर जर्नल या डिजिटल स्क्रैप बुक बनाइए। ध्यान दीजिए कि आप शहर में चील जैसे पक्षियों और नेवले जैसे जानवरों को भी देख सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन जानवरों को शहरी वन्य जीव के रूप में संदर्भित करना शुरू कर दिया है। अपने घर में आने वाले पक्षियों का निरीक्षण कीजिए। ध्यान दीजिए कि वे कैसे दिखते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं। उनका स्थानीय नाम एवं वैज्ञानिक नाम पता कीजिए। इसके साथ ही पक्षियों के बारे में जितना हो सके उतना पता लगाइए। परिवार के सदस्यों और समुदाय के बुजुर्गों से उन पक्षियों और जानवरों के बारे में पूछिए जिन्हें वे बचपन से देखते आ रहे हैं। सोचिए और जवाब दीजिए। एक, आपको क्या करने में आनंद आया? दो, आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तीन, अगली बार आप क्या अलग करेंगे? चार, आपके द्वारा जैव विविधता विवरणिका का क्या महत्व है? पांच, परियोजना से संबंधित अन्य कौन सी नौकरियां हैं? अपने आसपास देखिए, लोगों से बात कीजिए और अपना उत्तर लिखिए। छह, आपके द्वारा क्रियान्वित की गई गतिविधि से संबंधित नौकरियों के कुछ उदाहरण वन अधिकारी, वैज्ञानिक और संरक्षणवादी हैं। पृष्ठ संख्या 54, अपने पर्यावरण और पृथ्वी का संरक्षण कीजिए। यहाँ चार चित्र दिए गए हैं। पर्यावरण, यहाँ पर्यावरण से संबंधित चित्र दिया गया है। हरित ऊर्जा, यहाँ हरित ऊर्जा से संबंधित चित्र दिया गया है। पौधे, यहाँ पौधों से संबंधित चित्र दिया गया है। ग्रह, यहाँ पृथ्वी ग्रह से संबंधित चित्र दिया गया है। यहाँ पांच चित्र दिए गए हैं। यहाँ सजीव और निर्जीव वस्तुओं से संबंधित चित्र दिया गया है। प्राकृतिक संसाधन, यहाँ प्राकृतिक संसाधन से संबंधित चित्र दिया गया है। भोजन एवं निवास, यहाँ भोजन एवं निवास से संबंधित चित्र दिया गया है। हमारा घर, यहाँ घर से संबंधित चित्र दिया गया है। संरक्षण, यहाँ पृथ्वी के संरक्षण से संबंधित चित्र दिया गया है। उत्पादन, यहाँ उत्पादन से संबंधित चित्र दिया गया है। वृद्धि, यहाँ पौधे की वृद्धि के संबंध में चित्र दिया गया है। बचाओ, यहाँ आवश्यक चीजों को बचाने के बारे में चित्र दिया गया है। इस पृष्ठ पर अपने पर्यावरण और पृथ्वी का संरक्षण करने से संबंधित चित्र दिए गए हैं। इसके साथ ही भाग दो समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कौशल बोध, ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, वाचन स्वर मुइनुल हुसैन, निर्माण सहयोग सुरेंद्र कुमार, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

मेरी धरती लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 25वीं कड़ी चक्रवात का चक्कर। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने जाना कि तरल पदार्थों के गुण क्या हैं, वाकर संचरण क्या है, महासागर वायुमंडल का संचरण एक कमाल का संचरण है, एल नीनो और ला नीना प्रकृति का अपना तरीका है ऊर्जा पोषक तत्वों आदि का एक संतुलन स्थापित करने का। तो लीजिए आगे सुनते हैं धरती मेरी धरती की 25वीं कड़ी चक्रवात

0: सृष्टि,
1: सृष्टि बेटी।
2: जी मम्मी।
1: बेटी ये मानव सुबह सुबह कहाँ चला गया?
2: ओहो मम्मी क्यों परेशान होती हो, आजकल अपने मानव को पतंग उड़ाने का शौक चढ़ा है ना, तो बस सुबह से पतंग उड़ाने की कोशिश शुरू।
3: हाँ। अरे भाई पतंग उड़ाने के लिए हवा भी तो होनी चाहिए, और अभी तो देखो हवा लगभग रुकी हुई है।
2: तो पापा अभी आएगा ना मानव अपना मुंह फुलाकर।
4: लो आ गया। अरे शक्ल तो देखो कैसी उड़ी हुई है।
1: क्यों मानव उड़ गई पतंग?
5: क्या मम्मी जब भी पतंग उड़ाने जाओ पता नहीं हवा कहाँ भाग जाती है।
3: मानव बेटा जो सच में पतंग उड़ाने में माहिर होते हैं वो थोड़ी बहुत हवा में भी पतंग उड़ा ही लेते हैं।
2: ठीक कहा पापा, पर अपने मानव को तो हमेशा हवा कम ही लगती है, चक्रवात भी आ जाए तब भी इसकी पतंग के लिए हवा कम ही रहती है।
4: बिल्कुल ठीक कहा सृष्टि, चक्रवात में अपना मानव पतंग नहीं उड़ा पाएगा, हाँ खुद जरूर उड़ जाएगा।
1: अच्छा चलो चलो अब सुबह सुबह मानव का मजाक बहुत हो गया, चलो नाश्ता कर लो। चल मानव बेटा।
3: वसुधा तुम और बच्चे नाश्ता कर लो, मैं बाद में करूंगा।
2: बाद में क्यों पापा?
1: अरे सृष्टि इस्लाम भाई साहब और उनकी पत्नी नीलिमा जी जो आने वाली हैं, तुम्हारे पापा उन्हीं के साथ नाश्ता करेंगे।
3: हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल।
4: अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है, नीलिमा आंटी तो पहली बार हमारे घर आ रही है।
1: हाँ विवेक बेटा।
2: अरे तो हम सब नाश्ता उन्हीं के साथ कर लेंगे ना मम्मी।
1: ठीक है सृष्टि बेटा,
2: पर मुझे तो नाश्ता करा दो, मुझे बहुत भूख लगी है।
4: मम्मी इसे नाश्ता करा दो, ये चक्रवात बिना खाए शांत होगा नहीं।
2: क्या भैया सुबह से चक्रवात चक्रवात कर रहे हो? अच्छा अब बताओ भी कि ये चक्रवात होता क्या है?
4: लो
2: हर साल ही तो आता है चक्रवात, तूने नाम नहीं सुना?
5: नहीं।
4: अरे मानव हरिकेन कटरीना, हरिकेन डेनिस, हरिकेन माया, हरिकेन।
2: क्या भैया चक्रवातों की बात करते करते आप हरिकेन पे कहाँ पहुँच गए?
1: अरे मानव ये हरिकेन चक्रवात एक ही तो है।
2: एक है? तो फिर ये नाम अलग अलग क्यों है?
3: बेटे ये तो तुम्हें तुम्हारे इस्लाम अंकल और उनकी पत्नी नीलिमा जी बता पाएंगे। पता है नीलिमा जी मौसम विज्ञानी हैं।
5: भैया ये कैटरीना डेनिस माया ये सब तो लोगों के नाम है ना?
4: हाँ मानव, पर ये नाम कैसे पड़े क्यों पड़े ये मुझसे मत पूछो, ये नाम चक्रवातों के जैसे भी पड़े हो ये तुम्हें नीलिमा आंटी बताएंगी। हो सकता है चक्रवात का कोई नाम नीलिमा आंटी ने ही सुझाया हो।
5: अरे वाह फिर तो नीलिमा आंटी मेरे नाम पर भी चक्रवात का नामकरण कर सकती है।
1: शायद
5: फिर तो बहुत मजा आएगा। मम्मी फिर मैं भी इस्लाम अंकल और नीलिमा आंटी के साथ ही नाश्ता करूंगा।
1: क्या देर से?
2: पर मानव अपने नाम पर चक्रवात का नाम क्यों रखवाना है?
5: दीदी फिर मैं भी फेमस हो जाऊंगा, कितना अच्छा लगेगा ना, मानव चक्रवात। अरे
4: मानव तू तो पहले से ही चक्रवात है जिसके द्वारा मचाई गई तबाही हम रोज देखते हैं।
5: क्या भैया?
3: अरे अरे लगता है वो लोग आ गए। अरे आओ इस्लाम आओ।
1: आइए आइए भाई साहब आइए।
2: नमस्ते नमस्ते आंटी।
1: हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। कैसी है नीलिमा जी?
6: मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी जी।
7: मैं सूर्यप्रकाश। बड़े जोर से हंसी की आवाज आ रही थी, क्या बात है हमें भी बताओ ना।
3: अरे बस वो ऐसी कोई खास बात नहीं है। अरे
4: अंकल मैं बताता हूँ ना। कुछ खास नहीं अंकल, बस अपना मानव चाहता है कि नीलिमा आंटी किसी चक्रवात का नाम उसके नाम पर भी रखवाने में उसकी मदद करे। बस
3: बात तो यही है
1: भाई। मानव क्या ये बात सच है?
2: आंटी मैं तो बस यूं ही सोच रहा था।
7: भाई मानव किसी और चीज में नाम रोशन करना था, ये चक्रवात ही क्यों?
5: अब विवेक भैया ने इतने सारे नाम बताए तो मैंने सोचा मेरे नाम का भी चक्रवात हो जाए तो बढ़िया रहेगा।
1: वैसे मानव क्या तुम जानते हो कि चक्रवात क्या होते हैं?
5: नहीं आंटी पूरी तरह से तो नहीं, पर हाँ ये पता है कि इसमें मेरी पतंग उड़े ना उड़े पर मैं जरूर उड़ जाऊंगा।
7: चलो अच्छा हमारे मानव को इतना तो पता है।
1: चलो मानव ऐसा करते हैं पहले तुम ये जान लो कि चक्रवात क्या है, फिर तुम चाहोगे तो तुम्हारे नाम पर चक्रवात का नाम भी रख देंगे। हाँ?
5: अरे वाह बहुत मजा आएगा।
1: चलो भैया आओ सब लोग नाश्ता कर लो।
7: ये भी
3: आ जा।
7: तो भाभी जी ने क्या बनाया है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भाई, नाश्ता भी करते हैं और बातें भी करें ना।
5: हाँ तो आंटी बताइए ये चक्रवात क्या होता है?
1: मानव, तुम्हारे इस्लाम अंकल ने बताया था कि वो तुम्हें पहले महासागर वायुमंडल के संचरण के बारे में बता चुके हैं थोड़ा बहुत।
5: जी आंटी।
1: और तुम ऊर्जा के हस्तांतरण के बारे में कुछ कुछ जानते हो।
5: बिल्कुल।
1: तो मानव, ये चक्रवात आमतौर पर उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में बनते हैं। असल में ये कम दबाव वाली प्रणाली है।
7: मानव बेटा, ये महासागर वायुमंडलीय संचरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भूमध्य रेखा पर स्थित क्षेत्रों से ऊष्मा को ऊंचे अक्षांश वाले क्षेत्रों में पहुंचाती है।
5: अच्छा, तो यहाँ भी सारा ऊर्जा का लेन देन है।
4: बिल्कुल ठीक कहा मानव तुमने। मोटे तौर पर देखें तो गर्म महासागरीय पानी से जल वाष्प बनती है और इस जल वाष्प का ऊंचाई पर घनीकरण होता है जिससे इस जल वाष्प में मौजूद ऊष्मा बाहर निकलती है।
5: हाँ भैया, ये तो होगा ही। फिर
7: बस मानो बेटा, यही जल वाष्प से निकली ऊर्जा इन उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों से उठने वाली चक्रवातों का शुरुआती ऊर्जा का स्रोत होती है।
5: यानी गर्म पानी की ऊर्जा से ही ये चक्रवात का इंजन चलता है।
1: अच्छा, एक बात और बताऊं तुम्हें। मध्य अक्षांशों वाले चक्रवात अपनी ऊर्जा वातावरण में पहले से मौजूद तापमान से ग्रहण करते हैं।
5: अंकल, ये उष्ण कटिबंधी चक्रवात कुछ खास परिस्थितियों में ही बनते हैं ना?
7: हाँ सृष्टि बेटे, पहले से जारी मौसमी गड़बड़ी, गर्म उष्ण कटिबंधी सागर, नमी तथा अपेक्षाकृत हल्की हवाएं उष्ण कटिबंधी चक्रवातों के बनने का मुख्य कारण है।
1: और यही अनुकूल परिस्थितियां लंबे समय तक चलती रहे।

0: रहती है, तो ये सब मिलकर तूफान से जुड़ी तेज हवाएं, ऊंची लहरें, वेगवान वर्षा तथा बाढ़ पैदा करती हैं।
1: चक्रवात से बाढ़ आती है
2: और क्या भयानक तबाही मचती है।
3: मानव, चक्रवात महासागरों से ही उठते हैं क्योंकि उन्हें गर्म पानी की जरूरत होती है ऊर्जा के लिए। तूफान में मौजूद तेज हवाएं और कम दबाव वाष्पीकरण करते हैं, इससे चक्रवात को और ऊर्जा मिलती है और वो और प्रचंड हो जाते हैं।
1: पर भैया, जब ये सागर में बनते हैं तो लोगों को तो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते।
2: अरे मानव, इसीलिए कहती हूँ कि रोज अखबार पढ़ाकर हरिकेन कटरीना को भूल गया क्या?
0: मानव, गहरे समुद्र में उठा ये चक्रवात अपनी मस्ती में ऐसा झूमता हुआ घूमता है कि कई बार वो तट से बहुत गति से टकरा जाता है। पर चक्रवात की ये झूमती मस्ती तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए तबाही का संदेश लेकर आती है।
4: असल में मानव, चक्रवात की ऊर्जा का स्रोत तो सागर का गर्म पानी होता है। भूमि पर पहुंचकर चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत खत्म हो जाता है तो उनकी गति भी कम हो जाती है, पर रुकते रुकते भी ये चक्रवात कई बार भयंकर तबाही मचा देते हैं।
3: और मानव, जानते हो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का वर्गीकरण 3 मुख्य समूहों में किया गया है।
1: अच्छा।
3: पहला ट्रॉपिकल डिप्रेशन यानी उष्णकटिबंधीय दबाव, दूसरा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स यानी उष्णकटिबंधीय तूफान, और चक्रवात के तीसरे समूह का नाम चक्रवात के पैदा होने वाले क्षेत्र पर निर्भर करता है।
4: शाबाश विवेक, तुमने काफी पढ़ रखा है।
5: अरे इस्लाम, ये विवेक तो अब लोकप्रिय वैज्ञानिक लेख भी लिखने लगा है।
2: बहुत खूब विवेक, बहुत अच्छे।
3: थैंक यू आंटी। बस अभी मैं चक्रवातों पर लिखने की सोच रहा था, इसीलिए उनके बारे में आजकल पढ़ रहा हूँ।
4: वेरी गुड, बहुत अच्छे विवेक। चलो, मानव के लिए अच्छा है, विवेक साथ में रहेगा तो उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। असल में मानव, ये जो विवेक ने बताया उष्णकटिबंधीय दबाव, ये बादलों और गरजने वाले तूफान की एक संगठित प्रणाली है जिसका एक तय सतही संचरण होता है तथा जिसमें हवाओं की अधिकतम गति 62 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होती है।
1: अच्छा,
0: और ये उष्णकटिबंधीय तूफान भी इसी के समान होता है, परंतु इसमें हवा की गति 62 से 117 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस गति पर चक्रवात की आकृति बनने लगती है।
1: चक्रवात की आकृति?
3: हाँ मानव, चक्रवात की आकृति बनने लगती है। चक्रवात की तीव्रता जो 117 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होती है, इस गति में उष्णकटिबंधीय चक्रवात में नेत्र यानी आंख बनने लगती है।
1: अच्छा।
3: हरिकेन की आंख पूरे चक्रवात का केंद्र होता है जो अपेक्षाकृत काफी शांत होता है। चक्रवात की आंख उपग्रह से छोटे गोलाकार बादल रहित केंद्र के रूप में दिखती है और इस आंख के आसपास के क्षेत्र को आई वॉल यानी आंख की दीवार कहते हैं, जो करीब 16 से 80 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र होता है जिसमें तूफान की सबसे ताकतवर हवाएं और गरजने वाला झंझावात मौजूद होता है जो चक्रवात के केंद्र यानी आंख के चारों तरफ गोल गोल घूमता रहता है।
4: हाँ, और इस कारण इस पूरी प्रणाली को एक विशिष्ट सर्पिल आकृति प्राप्त होती है। चक्रवात के घूमने की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस गोलार्ध पर स्थित है। उत्तरी गोलार्ध पर इसके घूमने की दिशा घड़ी के विपरीत होती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में।
1: क्या इन चक्रवातों को हरिकेन भी कहते हैं?
4: मानो बेटा, अलग अलग क्षेत्रों में इन चक्रवातों का नामकरण अलग अलग है। उत्तरी अटलांटिक में 117 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ज्यादा तेज वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है।
0: प्रशांत महासागर के विभिन्न भागों में इन्हें हरिकेन, टाइफून या ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, जबकि उत्तरी हिंद महासागर में इन्हें तीव्र चक्रवाती और हिंद महासागर में इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं।
1: और आंटी, इनके नाम कैसे पढ़ते हैं?
2: नीलिमा आंटी, लगता है मानव अपने नाम पर चक्रवात का नाम पढ़वा कर ही मानेगा।
4: मानव बेटा, सैकड़ों वर्षों से कैरेबिया क्षेत्रों में आने वाले चक्रवातों को संतों के दिवसों का नाम दिया गया। इन चक्रवातों को मानवीय नाम देने की परंपरा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पड़ी, जब अमेरिका के वायुसेना और नौसेना के मौसम वैज्ञानिकों ने अपनी पत्नियों और प्रेमिकाओं के नाम पर चक्रवातों का नामकरण किया। 1950 से अमेरिका के मौसम ब्यूरो ने औपचारिक रूप से अक्षरों के अनुसार नाम देने शुरू किए और 1953 में महिलाओं के पहले नाम से चक्रवातों का नामकरण किया गया। 1979 से पुरुषों के पहले नामों को अपनाया गया।
0: विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के क्षेत्रीय विशिष्ट केंद्र ने हिंद महासागर से उठने वाले चक्रवातों को नाम देने का निर्णय 2003 में इस्लामाबाद में हुई क्षेत्रीय बैठक में तय किया था। नई दिल्ली स्थित WMO के क्षेत्रीय विशिष्ट केंद्र के सदस्य देशों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ओमान, थाईलैंड, मालदीव और म्यांमार ने मिलकर चक्रवातों के लगभग 40 नाम सुझाए हैं, जो WMO ने मान लिए हैं। हिंद महासागर में उठे चक्रवात का नाम म्यांमार का दिया हुआ है। इससे पहले भारतीय तट से अक्टूबर में टकराया ओनील चक्रवात एक बांग्लादेशी नाम है, फानूस पाकिस्तान द्वारा किया गया नामकरण है।
6: पानी पियेंगे?
7: अच्छा। भाभी जी, फानूस फानूस तो शमा की हवा से हिफाजत करने के लिए होता है।
4: बिल्कुल। तो सूर्य प्रकाश जी, इस फानूस ने तो हवा की हवा खराब कर दी।
0: ये बात भी सही है। फानूस के बाद आने वाला चक्रवात माला श्रीलंका द्वारा दिया गया नाम है और उसके बाद मुग्दा नाम थाईलैंड द्वारा दिया गया है। इसी सूची के कुछ भारतीय नाम भी हैं, जैसे आकाश, बिजली, जल, लहर और मेघ। भारत में नामों का उपयोग करने के लिए अभी निर्णय लेना वैसे बाकी है, परंतु भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने अंतर्राष्ट्रीय बुलेटिनों में इन नामों को देना शुरू कर दिया है।
6: हाँ,
0: पानी नहीं पीऊंगी, चाय पीऊंगी।
4: पता है मानव, अटलांटिक में जुलाई से 30 नवंबर तक चक्रवातों का मौसम रहता है, यानी अटलांटिक हरिकेन सीजन। हर वर्ष अमेरिका में तटीय क्षेत्रों में कई चक्रवात आते हैं, जैसे कैटरीना, आइरीन, एमिली तथा डेनिस आदि प्रमुख चक्रवात आए। डेनिस ने 2005 जुलाई के महीने में फ्लोरिडा शहर में काफी तबाही मचाई थी।
0: असल में हरिकेन काफी बलशाली उष्णकटिबंधी चक्रवात की एक श्रेणी है। उष्णकटिबंधीय गड़बड़ी, उष्णकटिबंधीय तूफान, उष्णकटिबंधीय प्रचंड तूफान और बवंडर, ये सभी विशिष्ट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का एक वर्गीकरण है, जो उनकी ताकत, क्षमता एवं स्थान पर निर्भर करता है।
1: अच्छा।
6: नीलिमा, मानवीय नाम को रखने से चक्रवातों की पहचान तो आसान हुई, परंतु उनके अमानवीय प्रहारों को रोक पाना अभी भी असंभव बना हुआ है।
0: बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब आपने।
1: क्या चक्रवात सच में बहुत तबाही मचाते हैं?
0: मानव, हर चक्रवात तबाही नहीं मचाता, क्योंकि हर चक्रवात भूमि से टकराता नहीं है। विभीषिका तो इस बात पर निर्भर करती है कि किस कैटेगरी का चक्रवात भूमि से टकराता है।
1: कैटेगरी यानी श्रेणी, चक्रवातों में भी कैटेगरी होती है?
4: हाँ मामा बेटा, चक्रवातों की श्रेणीबद्ध करने के लिए साफिर सिम्पसन हरिकेन स्केल का उपयोग किया जाता है। ये एक 5 अंकों की निर्धारण प्रणाली है, जिसका उपयोग चक्रवात के भूमि से टकराने पर होने वाले माली नुकसान एवं बाढ़ आने की संभावना के मूल्यांकन के लिए किया जाता है।
0: देखो, कैटेगरी एक में पवन वेग करीब 119 से 152 किलोमीटर प्रति घंटा होता है और तूफानी लहरें सामान्य से 4 से 5 फुट ऊंची होती हैं। और इस वेग में बंधन रहित चलते फिरते आवास, झाड़ियां और पेड़, कुछ तट पर लगे खंबे खतरे में होते हैं तथा कुछ तटीय इलाकों में बाढ़ भी आती है।
4: अच्छा। और कैटेगरी दो में पवन वेग करीब 152 से 177 किलोमीटर प्रति घंटा होता है और तूफानी लहरें सामान्य से 6 से 8 फुट ऊंची होती हैं।
8: और जानते हो मानव, इस वेग में कच्ची छतें, पेड़, कहीं चलते फिरते आवास, खंबे, छोटी नौकाएं खतरे में होती हैं तथा तूफान के केंद्र के पहुंचने से 2 से 4 घंटे पहले ही तटीय सड़कों और निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है। मानव, ये बात हुई कैटेगरी दो की। कैटेगरी तीन में पवन वेग करीब 178 से 209 किलोमीटर प्रति घंटा होता है और तूफानी लहरें सामान्य से 9 से 12 फुट ऊंची होती है।
1: बाप रे।
8: मानव, इस वेग में छोटे घर एवं भवन, बड़े पेड़, सभी चलते फिरते आवास खतरे में होते हैं। केंद्र के आने से 3 से 5 घंटे पहले ही सभी निचले इलाकों में बाढ़ आती है और बाढ़ से सभी छोटी संरचनाएं तबाह हो जाती हैं।
4: और मानव, कैटेगरी चार में पवन वेग करीब 210 से 279 किलोमीटर प्रति घंटा होता है और तूफानी लहरें सामान्य से 13 से 18 फुट ऊंची। और इसमें दीवारें, छतें, छोटे घर, दरवाजे, खिड़कियां और सभी साइन बोर्ड और पेड़, मतलब तट के पास लगभग पूरी तबाही मच जाती है। समुद्री तल से 10 फुट तक की ऊंचाई पर स्थित इलाकों में बाढ़ की संभावना होती है। इस श्रेणी के चक्रवातों में लगभग 10 किलोमीटर तक के अंदर के इलाकों को खाली कराया जाता है।
0: और अगली कैटेगरी है कैटेगरी 5। इसमें 279 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा का पवन वेग होता है। तूफानी लहरें सामान्य से 18 फुट से भी ज्यादा ऊंची।
1: अच्छा,
0: कैटेगरी 5 के चक्रवात में तो सभी आकार प्रकार के घर और भवन, खासकर छतें, खिड़कियां और दरवाजे खतरे में होते हैं। समुद्री तल से 15 फुट तक की ऊंचाई पर स्थित इलाकों में बाढ़ आ सकती है। और इस श्रेणी के चक्रवातों में लगभग 16 किलोमीटर तक के अंदर के इलाकों को खाली कराया जाता है।
3: पता है माना, हरिकेन कैटरीना में पवन वेग कुछ समय के लिए 300 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा था।
1: अच्छा अंकल, हरिकेन कैटरीना ने कितना नुकसान पहुंचाया था?
4: बेटे, एक अनुमान के अनुसार करीब 4500 अरब रुपए का नुकसान हुआ और 10,000 से भी ज्यादा लोगों की जाने गई।
3: और जानते हो मानव, 2007 में बांग्लादेश से टकराया चक्रवात सिद्र तो करीब 20,000 लोगों को ले लिया।
0: मानव, ये चक्रवात तो प्रकृति का एक ऐसा क्रूर प्रहार है जिसे रोकना असंभव है। पर हाँ, आज उपग्रह चित्रों और संचार माध्यमों के द्वारा इन चक्रवातों के बारे में लोगों को पहले से सावधान किया जा सकता है,
6: जिससे इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। और कुछ नहीं तो लोगों की जान तो बचाई ही जा सकती है।
1: क्या हुआ मानव बेटा, कुछ दुखी से लग रहे हो?
9: मम्मी, मुझे अब अपने नाम का चक्रवात नहीं चाहिए।
4: शाबाश मानव बेटा, तुम्हारा नाम तो मानवीय भावनाओं, इंसानी रिश्तों, उपकार, त्याग और कर्तव्य से जुड़ा होना चाहिए, किसी त्रासदी से थोड़ा है ना।
9: हाँ अंकल, मैं भी समझ गया कि अपना नाम बड़ा करने के लिए जीवन में बड़े काम करने होंगे।
0: इंसानी रिश्तों को मजबूत करना और प्यार, एकता का संदेश, यही मानव के नाम को बड़ा बनाएगा। अब हंस दो मानव, समझ गए तुम ना?
1: जी समझ गया आंटी, अब आप भी चक्रवात को मेरा नाम मत देना।
0: नहीं,
1: नहीं
0: दूंगी।
1: अच्छा बाय बाय।
0: बाय।
1: अरे मानव, मानव कहाँ चला?
0: नाम बड़ा करने।
1: अरे नहीं दीदी, अभी तो पतंग

0: मेरी धरती अभी आप विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 25वीं कड़ी सुन रहे थे, चक्रवात का चक्कर।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
2: माँ जी, मुझे टीबी है।
1: टीबी? और छुपा कर रखा?
2: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दें।
1: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरे। टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: I'm sorry, नमे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो।
4: It's over. अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती।

0: दुष्यंत, मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
1: सो व्हाट, मैं काम में बिजी था यार, तुम मुझसे मिलना चाहती थी, मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो।
0: यू नो शायद इट रियली हर्ट्स।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: तो कामली बाई और मम्मी उठाती है। ये अंकल कचरा क्यों उठा रहे?
1: चमन, टीचर ने बताया था ना,
2: सभी काम सब लोग कर सकते हैं, पुरुष या महिला।
1: सफाई करना तो हम सभी का काम है। अपा, एक मिनट, मैं भी कचरा उठाने में आपकी मदद करूँगी।
3: ठीक है, चलो तो हो जाए कचरा पार्टी।

0: नहीं है कटरा पार्टी।
1: हाँ हाँ, हमें जाने की कोई भी जल्दी नहीं है।
2: बर्थडे पार्टी और घर से जो भी कचरा निकला है उसका सही उपयोग और प्रबंधन करना जरूरी है। तो हो जाए कचरा पार्टी।
3: कचरे का सही उपयोग और प्रबंधन मतलब
2: घर पे, स्कूल में या बाहर सड़क पर कचरा यूं ही नहीं फेंकना। ये कचरा हमारे वातावरण, जमीन, हवा, पानी को प्रदूषित करता है।
1: हाँ, बाहर सड़क पर यहाँ वहाँ कचरा फैलाओ तो कितनी बुरी बदबू आती है।
4: और कचरे के आसपास चूहे, छुछुंदर, मक्खी मच्छर का घर बन जाता है और कीड़े भी लग जाते हैं
5: जो हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए कचरे को हमेशा कूड़ेदान में डालो।
4: रुको तारा, पहले ये देख लो ये कचरा किस तरह का है।
5: कचरा भी अलग अलग तरह का होता है अब्बा।
4: हाँ तारा, ये देखो कि ये सूखा कचरा है या गीला कचरा है।
2: जो आसानी से सड़ जाए वो है गीला कचरा, और जो ना सड़े या कई सालों बाद सड़े वो है सूखा कचरा।
5: ये सड़ सकता है, इसका मतलब ये गीला कचरा है।
4: बहुत अच्छे तारा, हमेशा सोचो कि कचरा दोबारा किस काम आ सकता है।
6: इस गीले कचरे को गमले में डाल के मिट्टी से ढक दे तो कुछ समय के बाद ये गीला कचरा जैविक खाद बन जाता है।
4: तो अंकल, क्या हम बचा हुआ हलवा भी गमले में डाल सकते हैं? ये भी तो गीला कचरा है।
6: नहीं चौधरी, पका हुआ खाना गमले में नहीं डालना, उसे तुम जानवरों को खिला सकते हो।
5: वाह, कचरा भी आता दोबारा काम। तो ये गया गीले कचरे में।
1: और मेरे पास है सूखा कचरा।
4: वाह वाह वाह वाह, तुम सब समझ गए। तो इस तरह गड़बड़ी सूखे और गीले कचरे को अलग कर लिया। और अब ऐसे कचरे की बात करते हैं जो हजारों साल तक सड़ते नहीं, और कुछ कचरे तो खतरनाक भी होते हैं।
5: हजारों साल तक सड़ते नहीं
0: और खतरनाक भी होते हैं।
4: जैसे प्लास्टिक जो हजारों सालों तक ऐसे ही रहेगा, या फिर टूटा शीशा, ब्लेड वगैरह, अगर इन्हें इस कचरे में मिला दिया और कहीं जानवरों ने खा लिया तो
6: इसलिए कोशिश करो कि ऐसी खतरनाक चीजों को अलग से अखबार में लपेट कर बाजार जाते हुए कपड़े का थैला साथ ले लो, ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करना पड़े।
4: और अगर करना ही पड़ जाए तो उसे बार बार इसी तरह से इस्तेमाल करो, ना कि कुएं में फेंक दो।
0: वाह, बार बार इस्तेमाल।
1: जैसे इस गिफ्ट रैपिंग पेपर को हम अपनी नोटबुक या किताबों में कवर की तरह चढ़ा सकते हैं।
4: अरे ये क्या खुसर खुसर चल रही है।
5: अब आप देखिए अब्बा, हमारी कचरा कला। कचरा पार्टी की कचरा कला।
4: हमने कचरे को दोबारा इस्तेमाल करके अपने वातावरण को बचाया।
7: अरे वाह, इसे तो मैं अपने टेबल पर सजाऊंगा।
3: तो तुम सब कब कर रहे हो कचरा पार्टी?

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी।
6: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
5: और लाइट बिल के?
6: अब 0 रुपए कैसे दूं?
5: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
6: पक्का।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: मैडम यू कैन बी वेरी फंटा।
10: केको डाइट का नाम सुना है? आज से ये सब बंद और वो शुरू।
11: अरे बीबी जैसी पहले थी वैसी फिट हो जा।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब होटल मॉल स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।